听众朋友们，接下来我们播送 Sri Uttam Pradhan 唱的一首民间歌曲，请享受。

听众朋友们，接下来我们播送Alka Yagnik 唱的一首歌曲，听众朋友们，请享受。

听众朋友们，接下来我们播送 Udit Narayan 唱的一首歌曲，请享受。

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वनगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य गुजरातस्य वडोदरा नगरे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालयस्य 75वें वार्षिके दीक्षांत समारोहे भागं भजिष्यति. समारोहावधौ राष्ट्रपति पदासीनया मुर्मू वर्यया 600-12,000 विद्यार्थिभ्यः उपाधयः प्रदास्यति. स्नातक स्नातकोत्तर कार्यक्रमेषु शैक्षणिकोपलब्धिभ्यः सा विद्यार्थिभ्यः सुवर्ण पदकानि अपि प्रदास्यति. तदनन्तरम् असौ वडोदरा नगरे ब्रह्मकुमारीज इति संस्थायाः ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति. कार्यक्रमस्य अन्तर्गते सा विश्वस्य नवनिर्माणाय आध्यात्मिक जागरणम् इति परियोजनायाः उद्घाटनं करिष्यति तथा विकसित भारताय युवा राष्ट्र निर्माणाय आन्तरिक शक्तेः जागरणम् इति अभियानस्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भं करिष्यति. राष्ट्रपतिः गुजरातस्य त्रिदिवसीय यात्रायामस्ति. राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः ह्यः गुजरातस्य एकतानगरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इत्यस्य भव्य पृष्ठभूमौ आयोजिते समारोहे भारतीय चलचित्र क्षेत्रस्य प्रमुख प्रतिभाभ्यः 24,000-2,000 वर्षस्य 270 राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारान् प्रदत्तवती. चलचित्र जगतः जनान् सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः उक्तवती यत् चलचित्रम् भारतस्य समृद्धां सांस्कृतिक वैविध्यतां प्रतिबिम्बयति तथा विभिन्न भाषाणां प्रादेशिक परिप्रेक्ष्यानां राष्ट्रियाभिलाषाणां च मध्ये सेतु रूपेण कार्यं करोति.
1: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है. सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती. भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है. उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है. ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं.
0: समारोहे सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव घोषितवान् यत् राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार समारोह अधुना देशस्य प्रमुखेषु पर्यटन स्थलेषु आयोजयिष्यन्ते. सः राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च भविष्ये पुरस्कार समारोहाणाम् आतिथ्याय प्रमुख स्थलानां चयनं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्. समारोहे राष्ट्रपति वर्यया देशस्य आहत्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगतेभ्यः 92 पुरस्कार विजेतृभ्यः सम्माननं प्रदत्तम्. प्रसिद्धः कन्नड अभिनेता अनंत नागः भारतीय चलचित्र क्षेत्रे 15-दशकाधिककालपर्यन्तं प्रदत्तस्य उत्कृष्ट योगदानस्य कृते प्रतिष्ठितेन दादा साहब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानितः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् उडुपि इत्यत्र श्री पेजावर अधोक्षज मठस्य श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामिना अन्यैः गणमान्यैः च सह मिलितवान्. अस्मिन् अवसरे श्रीमोदिना पद्म विभूषण यतिकुला चक्रवर्ती श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः जन्म शताब्दी समारोहस्य प्रतीकचिह्नस्य अनावरणं कृतम्.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रभाव, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South.
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉ जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमरीका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए

0: कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है, जहां व्यवसायियों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
2: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वतम से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
5: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहां पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
1: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
2: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
1: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
3: मैंने पास पीजीवीसीएल का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
1: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम है। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉयस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नव भारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for Global South cooperation amid conflicts, trade pressures and climate challenges. Also stresses for stronger ties with Latin American, Caribbean states as trade crosses $50 billion. US President Donald Trump backs India, Middle East, Europe economic corridor. Stresses on shifting energy infrastructure away from Iranian checkpoints. 11th Ayurveda Day being observed across the country today. Forecast of heavy to very heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. And at Asian Games in Japan, Indian rowers qualify for finals of men's singles and doubles sculls event. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for greater cooperation among Global South countries to address rising geopolitical tensions, economic challenges, climate shocks and pressures on the multilateral system. The minister was addressing the meeting of Global South countries on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York yesterday. Dr. Jaishankar said the global situation was marked by increasing conflicts, pressure on supply chains and trade, fragmented investment flows, growing debt vulnerabilities and inadequate development finance. He said Global South countries should work together to address key challenges, including supply chain, finance and connectivity bottlenecks.
6: We can see that in conflicts and geopolitical tensions, in the disruption of supply chains, in increasing trade barriers, fragmented investment flows, climate shocks, and the fact that international law and rules are under great pressure.
5: Dr. Jaishankar also met Italy's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Antonio Tajani on the sidelines of the United Nations General Assembly. In a social media post, the minister said their discussions focused on the Gulf situation, the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, and the Ukraine conflict. He said the two countries aim to expand collaboration and increase trade ties. Addressing the India-CELAC Foreign Ministers meeting during the UN High-Level Week 2026 in New York, the External Affairs Minister called for stronger economic and development partnership between India and the Community of Latin American and Caribbean States, CELAC. He said India-CELAC trade has now crossed $50 billion annually. Dr. Jaishankar said India emerged as one of the world's major economies over the past decade, with its GDP more than doubling and growth remaining robust. He added that India today combines a large and increasingly skilled human resource base with increasing capabilities, growing market, strong digital infrastructure and expanding technology capacities. He said India's engagement with the Global South went beyond its national interest and reflected its commitment to shared prosperity.
6: India has emerged as one of the major world economies. Our GDP has more than doubled, growth has remained robust, and India today combines a large and increasingly skilled human resource base with increasing capabilities, growing market, a strong digital infrastructure, and expanding technology capabilities.
5: US President Donald Trump has said his administration strongly supports the India-Middle East-Europe economic corridor. He said there is a need to shift Middle East energy infrastructure away from Iranian checkpoints amid multiple strikes on West Asian countries during the war. President Trump made the remarks while addressing a meeting with Gulf Cooperation Council and Arab leaders on the sidelines of the UN General Assembly in New York yesterday. President Trump said attacks on commercial shipping in neighboring countries had highlighted the need to shift the region's energy infrastructure. President Drobdi Murmu will grace the 75th annual convocation ceremony of the

0: Ayurveda Day being observed across the country today. Forecast of heavy to very heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. And at Asian Games in Japan, Indian rowers qualify for finals of men's singles and doubles sculls event. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तनाज़ात, तजारती दबाव और आबो हवा को दरपेश चैलेंजों के पेश नजर आलमी जुनूब तआवुन के लिए कहा है। उन्होंने लातिनी अमरीका और बोहेरे रोम के मुल्कों के साथ मजबूत तर ताल्लुकात पर जोर दिया क्योंकि तिजारत 50 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत मशरक वस्ता यूरोपीय राहदारी की हिमायत की है। उन्होंने तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे को ईरानी चौकियों से दूर ले जाने की जरूरत पर जोर दिया। आज मुल्क भर में 11वां यौम आयुर्वेद मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, साहिरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और जापान में एशियन गेम्स में भारतीय मल्लाहों ने मर्दों के सिंगल्स और डबल्स के चप्पुओं के मुकाबले के फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी जुनूब मुल्कों के माबेन मजीद तआवुन के लिए कहा है ताकि बढ़ती हुई जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी, इक्तसादी चैलेंज, आबो हवा में अचानक तब्दीलियों और कसीर मुल्की निजाम पर दबाव से निपटा जा सके। वजीर मौसूफ कल न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की 81वीं जनरल असेंबली से अलग आलमी जुनूब मुल्कों की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी सूरत हाल, बढ़ते हुए तनाज़ात, सप्लाई चेन और तिजारत पर दबाव, सरमायाकारी जिसकी राह में रुकावटें हायल हैं, बढ़ते हुए कर्ज के नताइज और तरक्की के लिए नाकाफी मालियात का शिकार है। उन्होंने कहा कि आलमी जुनूब मुल्कों को चाहिए कि सप्लाई चेन, मालियात और कनेक्टिविटी के लिए किए जाने वाले कामों समेत अहम चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करें। वजीर खारजा ने तवानाई की दस्तयाबी और कीमतों से नाजायज फायदा उठाए जाने की रोकथाम, अनाज और कीमियावी खादों की सप्लाई को दरपेश चैलेंजों से निपटते हुए सबके लिए खुराक की यकीनी फराहमी की कोशिशों, नीज इक्तसादियात और तिजारत के सही तौर तरीकों को फरोग देने के लिए कहा। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा के 2026 के आला सतह के हफ्ते के दौरान इंडिया सीलैक वज़राए खारजा की मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने भारत और लातिनी अमरीका नीज बहरे रोम के मुल्कों सीलैक की बिरादरी के दरमियान मजबूत तर इक्तसादी और तरक्याती शराकतदारी के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भारत सीलैक तिजारत अब सालाना तौर पर 50 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत पिछली दहाइयों में दुनिया की बड़ी मईशतों में से एक बनकर उभरा है और इसकी मजमूई घरेलू पैदावार तकरीबन दोगुना हो गई है और शरे तरक्की भी जबरदस्त रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी इंतजामिया भारत मशरक वस्ता यूरोपीय इक्तसादी राहदारी की पुरजोर हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान मगरबी एशियाई मुल्कों पर मुख्तलिफ हमलों के तनाजुर में मशरक वस्ता में तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे को ईरानी चेक पॉइंट से हटाने की जरूरत है। सदर ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर खलीज तआवुन काउंसिल और अरब लीडरों के साथ एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। सदर ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी ममालिक में तिजारती जहाजरानी पर हमलों से ये बात उजागर हो गई है कि इस खित्ते में तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुंतकिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह खित्ता देरीना चैलेंजेस से निमटने में कामयाबी हासिल करने वाला है जिसने दहाइयों से इस खित्ते को तबाह किया हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि ये विजन किस तरह भारत के शमसी इनकलाब में तब्दील हुआ।
2: بھارت کے شمسی انقلاب گجرات میں ریاستی سطح کی پہل سے ایک بڑی قومی مہم میں تبدیل

0: नागपुर से धनंजय वानखेड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यौम आयुर्वेद के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आयुर्वेद एक तरीके इलाज ही नहीं बल्कि सेहतमंद और मुतवाजन तर्ज जिंदगी का एक ताकतवर वसीला है। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से अपील की कि वो इस गरां कदर विरसे को मजीद मजबूती से अपनाने का अज़्म करें। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और रायलसीमा में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। मगरब वस्ती और इससे मुलाका शिमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर बना हुआ गहरा दबाव मगरबो शिमाल मगरब की तरफ बढ़ रहा है और ये ओडिशा के गोपालपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर जुनूब और जुनूब मशरक में वाक़ है। इसके आज रात विशाखापट्टनम और गोपालपुर के दरमियान साहिल पार करने की तवक्को है। ओडिशा के कई हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश जारी है जबकि रियासती हुकूमत ने हसास जिलों में तैयारियां तेज कर दी हैं। तफसील हमारे नामेकार से।
2: महकमे मौसमियात का कहना है कि यह गहरा दबाव मगरबी व शिमाल मगरब की तरफ बढ़ रहा है और आज रात या कल सुबह के इब्तदाई औकात में विशाखापट्टनम और गोपालपुर के दरमियान शिमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी ओडिशा के साहिल को पार करने का इम्कान है। गंजाम, गजपति और कोरापुट के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और दूरदराज के मकामात पर रेड वार्निंग जारी की गई है। अगले दो दिनों के लिए कालाहांडी, नबरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी भी रेड वार्निंग के तहत हैं। कई अजला में स्कूल बंद कर दिए गए हैं जबकि गंजाम, कोरापुट और कालाहांडी में सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
1: एशियाई खेलों में आज भारत की नजरें जापान के आईची नागोया में चौथे दिन अपने तमगों की तादाद बढ़ाने पर मरकूज होगी क्योंकि बहुत से एथलीट्स और टीमें मुख्तलिफ जुमरों में मुकाबला करेंगी। भारतीय तैराक बेनिस्टन बेनेडिक्शन ने मर्दों के 100 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल में जगह बनाने के लिए वो हीट्स में मजमूई तौर पर 9वें मुकाम पर रहे। फाइनल मुकाबले आज 1:38 पर होगा। भारतीय कश्तीरां बलराज पंवार ने मर्दों के सिंगल्स स्कल्स मुकाबले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल मुकाबला कल होगा। भारत मर्दों के डबल्स स्कल्स मुकाबले में भी फाइनल में पहुंच गया है। सतनाम सिंह और सलमान खान अपनी हीट में दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 6 मिनट में 15:63 का वक्त लिया। वो दो हीट्स में मजमूई तौर पर चौथे नंबर पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेपक टकराव में भारतीय मर्दों की रेकू टीम ने फिलीपींस को ग्रुप बी के पहले मैच में 2-0 से हराया। इस तरह उन्होंने 15-7, 15-10 से जीत हासिल की। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू खवातीन के 49 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में हिस्सा लेंगे। ये मुकाबला सुबह 10 बजे होगा। निशानेबाजी में ओलंपिक में 2 तमगे जीतने वाली मनु भाकर, खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम और इन्फिरादी क्वालिफिकेशन मुकाबलों में सुरुचि सिंह और ईशा सिंह के साथ हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब ने मारूफ अदाकार अनंतनाग को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए दादा साहब फाल्के अवार्ड पेश किए जाने से मुतल्लिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अखबार प्रताप ने इत्तला नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव के हवाले से लिखा है नेशनल फिल्म अवार्ड्स अब अहम सियासी मकाम पर मुनद होंगे। अखबारात ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को नुमाया किया है कि आलमी कशीदगी के वक्त कसीर जेती को मजबूत करना जरूरी। मईशत में निजी सरमायाकारी रफ्तार पकड़ रही है। इनकलाब ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के इस बयान को कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबारात की कुछ आलमी अहम खबरें इस तरह है अमरीका के वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद ईरान के साथ मुआहदा हो जाएगा, ट्रंप का बयान।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तनाज़ात, तजारती दबाव और आबो हवा को दरपेश चैलेंजों के पेश नज़र आलमी जुनूब तआवुन के लिए कहा है। उन्होंने लतीनी अमरीका और बहरे रोम के मुल्कों के साथ मजबूत तर ताल्लुकात पर जोर दिया क्योंकि तजारत 50 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई है। امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت مشرق وسطی یورپی راہداری کی حمایت کی ہے. انہوں نے توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو ایرانی چوکیوں سے دور

0: दूर ले जाने की जरूरत पर जोर दिया। आज मुल्क भर में 11वां यौम आयुर्वेद मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। और जापान में एशियन गेम्स में भारतीय मल्लाहों ने मर्दों के सिंगल्स और डबल्स के चप्पुओं के मुकाबले के फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा, जिसमें आप सुनेंगे अविनाश कुमार से राग अलहैया बिलावल। तबले पर संगति दी है आशीष सेन गुप्ता ने और हारमोनियम पर साथ दिया है सुमिता मिश्रा ने। लीजिए सुनते हैं अविनाश कुमार से राग अलहैया बिलावल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में आशीष सेन गुप्ता का तबला वादन और अविनाश कुमार का गाया अलहिया बिलावल। आपके साथ हारमोनियम पर थे सुमित मिश्रा और तबले पर संगत दे रहे थे आशीष सेन गुप्ता। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड में रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉ जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष

0: आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: इंडिया एंगेजमेंट विद ग्लोबल साउथ,
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कनाडा जाएंगे। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमरीका के मायामी में होने की संभावना है। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने भी महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 37-23 से हरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 74,884 पर और निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 23,439 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुभा रोहतगी। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said tax administrations are moving from paper-based and relationship-dependent processes to data-driven and digitally mediated systems. Addressing the inaugural session of the BRICS tax heads meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said that India's experience with faceless assessment, pre-filled returns, real-time invoice authentication and AI-enabled taxpayer assistance has generated interest among the BRICS partners. The minister identified three broad areas emerging from the BRICS tax track this year, which are technology, administration and people.
4: Look at what has emerged from the BRICS tax track this year. Technology, the use of data and digital infrastructure to make tax administration more precise, more accessible and less dependent on the discretionary powers of individuals. Administration, the governance structures, the shared standards and the practical tools that give a cooperation like ours a durable institutional shape.
3: The External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, has called for greater cooperation among global South countries to address rising geopolitical tensions, economic challenges, climate shocks and pressures on the multilateral system. The minister was addressing the meeting of global South countries on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York yesterday. He said global South countries should work together to address key challenges, including supply chain, finance and connectivity bottlenecks.
5: We can see that in conflicts and geopolitical

घर आंगन। हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर आंगन की अपनी एक धूप होती है और हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। बस जरूरत होती है उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की, जो अक्सर अपनी नजरों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। मैं हूं आपके साथ इस सफर की रेडियो हम सफर सोनाली और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कौन सा, जी हां घर आंगन। हर दिन की तरह

आज भी कुछ ऐसी बातें जो हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ी हैं, कुछ जानकारी, कुछ प्रेरणा और कुछ ऐसी कहानियां जो शायद आपको थोड़ी देर ठहर कर सोचने पर मजबूर करें। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे कैसे? जी हाँ, हमारे ईमेल आईडी के जरिए जो है fmgoldga@gmail.com। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर।

फिल्म लोफर में आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों आज है 23 सितंबर और हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बधिर लोगों के मानवाधिकारों, गरिमा

और समान अवसरों को लेकर समाज में समझ विकसित करना है। अब संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 के लिए जो थीम रखी है ना, वो है बधिर लोगों के मानवाधिकारों की घोषणा, यानी डिक्लेयरिंग डेफ पीपल्स ह्यूमन राइट्स। अब सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का नाम नहीं है दोस्तों, ये ना अपनी व्याकरण और अपनी संरचना वाली पूर्ण प्राकृतिक भाषाएं हैं। अब ना दुनिया भर में अलग अलग समुदायों द्वारा, अगर आप यकीन माने तो पता है 300 से अधिक सांकेतिक भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए जरा, हम में से ज्यादातर लोग अपनी बात कहने के लिए आवाज का सहारा लेते हैं, लेकिन किसी के लिए हाथों की गति, चेहरे के भाव और आंखों का संपर्क ही संवाद का रास्ता हो सकते हैं, है ना। इसीलिए समावेश का मतलब सिर्फ किसी को अपने साथ खड़ा कर देना नहीं है, समावेश का मतलब तो वो है कि हम उस तक पहुँचने की भाषा और रास्ता भी बनाएं, क्योंकि संवाद के लिए आवाज जरूरी हो सकती है लेकिन समझने के लिए संवेदना ज्यादा जरूरी है। मानेंगे ना?

दोस्तों, फिल्म कश्मीर की कली में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। आज जैसे कि हमने बताया 23 सितंबर है, एक और ख़ास दिन आज भी हम मनाते हैं। जी हाँ, हम आज मनाते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती। 1908 में बिहार के सिमरिया गांव में जन्मे दिनकर जी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिनकी रचनाओं में ओज, आत्मसम्मान, संघर्ष और मानवीय संवेदना एक साथ दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध कृति रश्मि रथी को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें महाभारत के कर्ण के जीवन को केंद्र में रखा गया था। कर्ण

के संघर्ष, उसके आत्मसम्मान और उसके जीवन की विडंबनाओं को दिनकर जी ने जिस तरह शब्द दिए, वह रश्मि रथी को हिंदी साहित्य की यादगार कृतियों में शामिल करता है। दिनकर जी की लेखनी की शक्ति का अंदाजा इन पंक्तियों से लगाया जा सकता है। दोस्तों, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। कितनी सीधी बात है, इंसान की पहचान उसके नाम या किसी और तरह से नहीं होती, बल्कि उसके कर्म से बनती है। दिनकर जी की जो लेखनी है वो हमें उसमें आत्मविश्वास बार बार दिखाई देता है। उनकी रचनाओं और अपने समय के उस समय के बहुत से सवालों को उनकी रचनाएं उठाती थीं और उनकी लेखनी में वो जुड़ा जाता था, लेकिन उनके भीतर की मानवीय संवेदना आज भी हमें उतनी ही प्रासंगिक लगती है। और शायद यही एक बड़े साहित्यकार की पहचान है कि भले ही समय बदल जाए, लेकिन उसकी पंक्तियां मनुष्य से लगातार संवाद करती है। और यकीन मानिए, जब कुछ अच्छा हम पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, तो मन हमारा अलग ही खुशी से झूम उठता है।

ये झूमता गाता गीत जो आप सुन रहे थे, ये था फिल्म पराया धन से। किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की आवाज़ थी। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ आप जुड़े हैं और आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, ये हमारा हौसला बढ़ाता है और साथ ही हमें ये पता चलता है कि हमारे FM गोल्ड को आप लोग कितना पसंद करते हैं, साथ ही हाँ हमारे प्रोग्राम घर आंगन को भी। तो देखिए, हमारे साथ जुड़े हैं नवीन भाटिया जी, लिख रहे हैं, सोनाली जी कहाँ गायब हो जाते हो, स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया आपकी ईमेल्स, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, जानकर हमें अच्छा लगता है कि आप कमी महसूस करते हैं। तो बस देखिए, लौट आई हूँ और फिर मिलती रहूँगी, शुक्रिया आपका। और हमारे साथ ये जुड़े हैं फहीम शलबाफ, श्रीनगर कश्मीर से जुड़े हैं और ये हमारे प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर भी सुनते हैं और इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि हमसे जुड़कर, ये शायद बहुत हमारी पुरानी श्रोता है, इनको ऐसा लगता है। बिल्कुल देखिए, ये रिश्ता ही हमारा ऐसा है कि आपके साथ कभी लगता ही नहीं है कि आप नए जुड़े हैं या हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं। आपका स्वागत है, हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। फिर हमारे साथ ये हैं उमेश कुमार जी, ये ख्याला से जुड़े हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं प्रोग्राम और गाने साथ में जानकारी भी बहुत अच्छी लग रही है, शुक्रिया। देखिए आप लोग तारीफ तो करते हैं, प्रशंसा हमें किसी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ आपके सुझाव भी, आपकी भगवान न करे कोई परेशानी हो या आपको हमसे किसी तरह की कोई शिकायत हो, तो वो भी आप हमारे साथ ज़रूर ज़रूर साझा कीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के 100.1 MHz FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली। देखिए दोस्तों, हमारे घर में सफाई हो, आंगन साफ हो, रसोई साफ हो, ये तो हम सब चाहते हैं, है ना। और लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी जो ये सफाई की है, ये घर की चौखट तक ही खत्म हो जाती है? नहीं, जिस सड़क से हम गुजरते हैं, जिस पार्क में हमारे बच्चे खेलते हैं या जिस बाजार में हम खरीदारी करते हैं या जिस सार्वजनिक जगह पर हम कुछ देर बैठते हैं, घूमते हैं, वो भी तो हमारा ही है ना। और इसी सोच को जन भागीदारी से जोड़ते हुए हमारे इस देश में इस समय स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान चल रहा है। ये जो अभियान है ना, ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा और इस वर्ष का जो इसका विषय है वो है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। यानी स्वच्छता केवल सरकार या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की भागीदारी से जुड़ा एक बहुत अहम विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हुए नागरिकों से स्वच्छता के लिए अपना समय और श्रम देने का आह्वान किया था। आज भी स्वच्छता से जुड़े अभियानों में जनभागीदारी को महत्वपूर्ण जगह दी जाती है। और देखिए, सफाई ही सेवा यानी स्वच्छता ही सेवा 2026 में सारे सार्वजनिक स्थानों का बहुत सफाई से कायाकल्प करना, साफ सुथरी पाठशाला होना और इसमें युवाओं की भागीदारी, सफाई मित्रों की सुरक्षा और उनका सम्मान, जन भागीदारी और कमरे से उपयोगी संसाधन या माफ कीजिएगा कचरे से उपयोगी संसाधन तैयार करने जैसी गतिविधियों पर जोर दिया जाता है। लेकिन किसी भी अभियान की असली ताकत तब बनती है जब वो हमारी आदत में उतर जाए, है ना। और देखिए, कूड़ा सड़क पर न फेंकना, गीले और सूखे कचरे को अलग रखना, फिर अगर जहाँ संभव हो हर बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की जगह बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ें चुनना, मतलब एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ कभी भी आप कोशिश कीजिए उसे ना इस्तेमाल करें, और सफाई करने वाले हाथों का सम्मान करना। जी हाँ, हमारे आसपास हमारे जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, उनकी सफाई, उनकी मेहनत का सम्मान करना। और हाँ, घर में भी आपकी जो माँ है, आपकी पत्नी है या घर की महिलाएं हैं, उनकी साफ सफाई में पूरा योगदान देना पूरे परिवार का एक धर्म और कर्तव्य होना चाहिए और हमें अपनी इस कर्तव्य परायणता को आगे भी समाज

के लिए भी आगे लेके चली चलती चलती चली जाना चाहिए। और देखिए, छोटे काम से ही ना बहुत बड़ी तस्वीर बनती है, क्योंकि स्वच्छता एक अभियान है। जब तक हम उसे बाहर से देखते हैं, जिस दिन वह हमारी आदत बन जाती है, उस दिन वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि इस धरा को हरा भरा और सुंदर कौन नहीं देखना चाहता।

बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म से आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में ये गीत। दोस्तों हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, हमारे श्रोता हैं। ये हैं गौरीशंकर जी, नांगलोई से लिखते हैं। सोनाली बेटा राम राम, जैसे हम खाने का इंतजार करते हैं वैसे ही आपके प्रोग्राम का इंतजार करते हैं। सुनकर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, शुक्रिया। अरे शुक्रिया आपका गौरीशंकर जी, आप इतने प्यार से हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और हमारा इतनी हौसला अफजाई

करती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करें और अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन ना उच्च शिक्षा की जो फीस होती है और दूसरे खर्च कई परिवारों के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे ना नवंबर 2024 में मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो भी आर्थिक कठिनाई के कारण मेधावी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से अगर किसी वजह से वंचित रह रहे हैं तो ना रहें, और इस योजना के तहत ना देश के कुछ ऐसे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर वो अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं और उन्हें वहां पर प्रवेश पाने के लिए शिक्षा ऋण के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। अपना दोस्तों, इस ऋण की जो खास बात है वो ये है कि इसके लिए जमानत और तीसरे पक्ष के गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। और ना यहाँ पर एक बहुत खास बात ध्यान देने के लिए जरूरी है, वो ये है कि शिक्षा ऋण की कुल राशि की कोई एक अधिकतम सीमा इस योजना में तय नहीं है। यानी ऋण की राशि पाठ्यक्रम की फीस, संस्थान से जुड़े दूसरे खर्चों और उचित शैक्षणिक और जीवन यापन संबंधित खर्चों पर निर्भर करती है। और इसके अलावा ना जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, उनके लिए 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सहायता का प्रावधान भी है। और ये सहायता पाठ्यक्रम की अवधि और उसके बाद एक वर्ष की जो स्थगन अवधि के दौरान दी जाती है। अब दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है ना, इसमें आवेदन की प्रक्रिया जो है वो डिजिटल है पूरी तरह से। इसके लिए जो हमारे विद्यार्थी हैं वो पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहाँ पर शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय अपनी पसंद के बैंक का चुनाव किया जा सकता है और पोर्टल पर आवेदन की स्थिति भी देखी जा सकती है। अब देखिए, एक विद्यार्थी आवेदन के समय अधिकतम ना एक साथ 3 बैंकों का चुनाव कर सकता है। एक और जरूरी बात वो ये है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए संस्थान का निर्धारित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची में होना और प्रवेश का योग्यता के आधार पर होना बहुत जरूरी है। अपना प्रबंधन कोटे से जो लिया गया प्रवेश होता है वो इस योजना के लाभ के लिए पात्रता उसकी नहीं होती है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई बच्चा उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहा है ना, तो केवल किसी भी बात पर भरोसा न करें। आधिकारिक पोर्टल पर पात्रता, संस्थान और आवेदन से जुड़ी जानकारी जरूर जांचें। आपको इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है वो है pmvidyalakshmi.co.in, यानी pmvidyalakshmi.co.in। क्योंकि हम जानते हैं कि सही समय पर मिली सही जानकारी कई बार किसी विद्यार्थी के लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता बन सकती है।

अखियों की झरोखे से इस फिल्म में आप सुन रहे थे हेमलता के साथ शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गाना। अच्छा दोस्तों, हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं और इस बात पर कई बार अमल भी हम करते हैं और बहुत बार कर रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है। और लेकिन ना, जब किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए छोटा सा कोई प्रोत्साहन भी मिल जाए ना, तो बदलाव थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। देखिए, अब मैं आपके लिए एक बहुत प्रेरणादायक एक चीज लेकर आई हूँ। वो ये है कि गुजरात में अंबाजी की पद यात्रा के दौरान प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए एक ऐसी ही पहल की गई है। देखिए, इस पहल में ना इस्तेमाल की जा चुकी प्लास्टिक की बोतलें जमा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और 10 प्लास्टिक की बोतलें जमा करने पर स्टील की दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली जो बोतलें होती हैं वो देने की व्यवस्था की गई है। मतलब आप 10 यूज की हुई प्लास्टिक की बोतलें दीजिए और उसके बदले में एक स्टील की बोतल आपको दी जाएगी। पदयात्रा और धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ये तो हम मानते हैं, और ऐसे में पानी की बोतलों से पैदा होने वाला कचरा भी बहुत बार बढ़ जाता है ना। और इसी पहल का विचार जो है वो यही है कि इस्तेमाल के बाद जो बोतल होती है वो सड़क या आसपास फेंकने की बजाय उसे जमा किया जाए और उसकी जगह ऐसी बोतल दी जाए जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक छोटी सी अदला बदली। और 10 इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक बॉटल्स कम और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली एक टिकाऊ बोतल ज्यादा सही है ना, है ना। तो देखिए, ऐसे में बात सिर्फ एक बॉटल की नहीं है, बात उस आदत की है जो धीरे धीरे हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। और अगर हम घर से निकलते समय अपनी पानी की बॉटल साथ रखें, बाजार जाते समय कपड़े का थैला रखें और किसी चीज़ का इस्तेमाल खत्म होने के बाद यह सोचें कि उसे फेंकना जरूरी है या नहीं, तो पर्यावरण के लिए हमारी छोटी सी कोशिश बहुत ज़्यादा मायने रख सकती है। क्योंकि प्रकृति के जो हमारी जो जिम्मेदारी है ना प्रकृति के लिए, वो हमेशा किसी बड़े काम से शुरू नहीं होती बल्कि छोटी छोटी आदतों से ही ये बात आगे बढ़ती है। और इसी तरह की बातों को मद्देनजर रखते हुए ये पहल गुजरात में शुरू की गई है। तो ये हुई एक बहुत प्रेरणादायक एक जानकारी आपके लिए। और अब सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत।

फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, इसमें आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों हम आगे बढ़े उसके पहले बता दें हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, ये हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, सोनीपत हरियाणा से। लिखते हैं कि इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा इन्हें। और लिख रहे हैं, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो, ना रखो घर में खुला पानी, फिर नहीं चला चलेगी मच्छर की मनमानी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है, इस बात को हम सभी को अमल में लाना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। अब हम आपको लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश के एक ऐसे अनोखे गांव की ओर जहां रातें आज भी बिजली की रोशनी से नहीं बल्कि दिए की लौ से जगमगाती है। आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में बसा कुरमा ग्राम अपनी अलग जीवन शैली के लिए जाना जाता है। पता है दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोगों ने ना आधुनिक सुविधाओं से कुछ दूरी बनाकर प्रकृति के करीब रहने का रास्ता चुना है। गांव में बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाता पता है, और ना सूरज ढलने के बाद घरों और आसपास की जगहों को रोशन करने के लिए तेल के दीयों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर खेती भी प्राकृतिक तरीके से की जाती है। खाना बनाने के लिए मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और चूने जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। खाना पारंपरिक तरीके से बनता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाती है। देखिए, एक तरफ आधुनिकता के दौर में आदमी जहाँ मशीन की तरह काम करने से बीमार पड़ जाता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो प्रकृति के साथ जीवन यापन करते हुए खुश रहते हैं। इतना ही नहीं, गांव के सभी लोग धनी परिवारों में पैदा होने के साथ ही उच्च शिक्षा हासिल करने के साथ लाखों में वेतन वाली कंपनियों में इन्होंने काम किया है। लेकिन आपको पता है, मशीनी जिंदगी से ऊब कर वे सब कुछ पीछे छोड़कर प्राकृतिक वातावरण अपने साथ इस परिवार में अपने परिवार के साथ कुरमा गांव में बिता रहे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। कितना अच्छा तरीका है ना अपने आप को प्रकृति से जोड़ने का और अपने शरीर को और अपने मन को स्वस्थ रखने का। ऐसे गांव में कौन नहीं जाना चाहेगा, आप जाएंगे?

आशा भोसले लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म प्रोफेसर का आप गाना ये सुन रहे थे। दोस्तों आपको एक खास जानकारी यहाँ पर देते हैं। बिहार के नालंदा की 52 बूटी हस्तकरघा कला हमारे देश की उन परंपराओं में शामिल है जिनमें कपड़ा सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं रहता, वो अपने साथ एक पूरी सांस्कृतिक कहानी लेकर चलता है। इस कला को आपको पता है अब भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिल चुका है। भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय के आधिकारिक रिकॉर्ड में इसका नाम नालंदा 52 बूटी साड़ी एंड फैब्रिक्स दर्ज है और इसका पंजीकरण 27 मार्च 2026 को हुआ है। 52 बूटी नाम में ही इसकी खासियत छिपी है। 52 बूटी यानी ऐसी 52 बूटी जो कपड़े पर बुनी जाने वाली छोटी छोटी आकृतियां होती हैं। नालंदा के बुनकर अपनी पारंपरिक बुनाई में कमल, बोधि वृक्ष, पीपल के पत्ते, धर्मचक्र और दूसरी सांस्कृतिक आकृतियों को कपड़े पर उकरते हैं। यानी एक साड़ी तैयार होती है लेकिन उसके साथ तैयार होती है एक कहानी, किसी परिवार के हुनर की कहानी, किसी गांव की पहचान की कहानी और उन हाथों की कहानी जिन्होंने बदलते समय के बीच अपनी परंपरा को टूटने नहीं दिया। GI टैग किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी वस्तु और उसकी विशिष्ट पहचान को आधिकारिक मान्यता देता है। 52 बूटी को यह मिली जो पहचान है, यह नालंदा की इस पारंपरिक बुनकरी को एक नई पहचान देती है ना। तो बस अब हम आ गए हैं हमारे कार्यक्रम के आखिरी चरण पर। चलते चलते आपके लिए ये गीत।

जी हाँ, लौट कर मैं भी आऊंगी आपके साथ किसी और दिन इसी कार्यक्रम में, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से कहा कि डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन निर्णय आपका होगा।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकते हैं, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना। डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन उस सूचना के नैतिक उपयोग कैसे करना है ये निर्णय आपको ही करना है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि एआई से सही सवाल पूछना चाहिए और आपको कभी कभी असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने जियो और जीने दो की सोच के साथ आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने का भी आह्वान किया।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने

0: और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से हटकर डेटा आधारित डिजिटल माध्यमों से संचालित प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत के फेसलेस आकलन, पहले से भरी हुई रिटर्न, रियल टाइम इनवॉइस प्रमाणीकरण और एआई सक्षम करदाता सहायता के अनुभव ने ब्रिक्स साझेदारों के बीच रुचि पैदा की है। मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी के 8 विधायक आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। इनमें लखमेन रिम्बुई, पीयूष मार्विन, किरमेन शाला और मायराल बोन सीएम प्रमुख हैं। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और अनिल एंटनी की मौजूदगी में इन विधायकों को पार्टी में सम्मिलित किया गया। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजों की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीत लिए हैं। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान, भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी। प्रतियोगिता में कल भारत का सामना जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार का सूचकांक आज दोपहर तक 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 383 अंक बढ़कर 74,912 पर और निफ्टी 115 अंक की बढ़त के साथ 23,444 पर था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anubha Rohatgi. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said tax administrations are moving from paper-based and relationship-dependent processes to data-driven and digitally mediated systems. Addressing the inaugural session of the BRICS tax heads meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said that India's experience with faceless assessment, pre-filled returns, real-time invoice authentication and AI-enabled taxpayer assistance has generated interest among the BRICS partners. The minister identified three broad areas emerging from the BRICS tax track this year, which are technology, administration and people.
2: Look at what has emerged from the BRICS tax track this year. Technology, the use of data and digital infrastructure to make tax administration more precise, more accessible and less dependent on the discretionary powers of individuals. Administration, the governance structures, the shared standards and the practical tools that give a cooperation like ours a durable institutional shape.
1: President Draupadi Murmu today graced the 75th annual convocation of Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara in Gujarat. Later, President Murmu will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of the Brahma Kumaris in Vadodara. During the program, she will also inaugurate the Spiritual Awakening for World Renewal Project and virtually launch the Youth for Viksit Bharat Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. The president is on a 3-day visit to Gujarat. The External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, has called for greater cooperation among global South countries to address rising geopolitical tensions, economic challenges, climate shocks, and pressures on the multilateral system. The minister was addressing the meeting of global South countries on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York yesterday. He said global South countries should work together to address key challenges, including supply chain, finance and connectivity bottlenecks. The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has completed 8 years today. Prime Minister Narendra Modi had launched this scheme in September 2018 from Ranchi, Jharkhand, which has become the world's largest government-funded health assurance scheme. Prime Minister Modi said that the scheme has enabled record savings on medical expenses and benefiting the poor and middle class. Indian Railways has achieved a significant milestone in railway safety with the successful commissioning of Kavach version 4.0 for the first time on South Central Railway. Railway Ministry said the upgradation from Kavach version 3.2 to version 4.0 has been successfully completed over 108 route kilometres on the Malkajgiri-Kamareddy section of Hyderabad Division. Kavach 4.0 brings enhanced safety, advanced technology, higher reliability and safer train operations. The ministry said the latest version incorporates further technological improvements based on the experience gained from the deployment of Kavach version 3.2 in over 1,465 route kilometres on South Central Railway. Fitch Ratings has raised India's forecast for India's GDP growth in the current fiscal year to 6.9%, up from its earlier projection of 6.4%. In its June Global Economic Outlook, the agency attributed the upward revision to strong first quarter growth and the resilience of the Indian economy. However, Fitch expects economic momentum to moderate during the second half of the fiscal year. It also anticipates that the Reserve Bank of India may raise interest rates by 25 basis points at its October monetary policy meeting. India's Jay Meena has won a historic bronze medal in men's soft tennis at the Asian Games in Nagoya. Meena lost 2-4 to Japan's Takuya Kurosaka in the semi-final today. He had assured India of its first ever Asian Games medal in soft tennis after defeating Sherwin Luguit of the Philippines 4-3 in a thrilling quarter-final. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम एक ही फिल्म में आप सभी सुनने वालों का, आप सभी श्रोताओं का स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम है एक ही फिल्म और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं 90 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत सी फिल्म जो कि उस वक्त के दौर के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी। जी हाँ, उस वक्त का दौर कहीं तो वो दौर जब भारतीय सिनेमा में सस्पेंस, थ्रिलर और साथ ही साथ बहुत ही सुरीले संगीत का एक अनोखा संगम देखने को मिलता था। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में बहुत सी म्यूजिकल थ्रिलर फिल्में आई थी और उन्हीं में से एक फिल्म हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे निर्देशित किया विक्रम भट्ट साहब ने। वैसे विक्रम भट्ट साहब ने बहुत सी फिल्में जो हैं म्यूजिकल थ्रिलर बनाई हैं, लेकिन ये फिल्म की एक अलग ही बात थी। तो लीजिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 1996 की फिल्म फरेब, जिसे निर्देशित किया विक्रम भट्ट ने। और इस फिल्म में अगर हम कलाकारों की बात करें तो ये फिल्म इस फिल्म में एकदम सभी कलाकार जो थे वो बिल्कुल नए थे, नवोदित कलाकार थे। फराज खान, सुमन रंगनाथन, जबकि उनके साथ थे मिलिंद गुना जी। जी हाँ, सभी कलाकार एकदम नए थे, लेकिन ये फिल्म उस वक्त काफ़ी अच्छी तरह से, मतलब कहें ना कि आप एक व्यावसायिक रूप से बहुत ज़्यादा सफल रही थी ये फिल्म। और ये फिल्म की जो कहानी है, इस फिल्म को प्रेरित कह सकते हैं कि ये जो फिल्म है ये प्रेरित थी 1992 की एक अमेरिकन फिल्म अनलॉफुल एंट्री से। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई थी। इस फिल्म में दो कपल की कहानी दिखाई गई, जिसमें एक कपल डॉक्टर रोहन वर्मा यानी कि फराज खान और उनकी पत्नी सुमन यानी कि सुमन रंगनाथन।

एक खुशहाल अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रहे होते हैं, और रोहन जो हैं, डॉक्टर रोहन अपना एक घर खरीदते हैं और अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। उनके पड़ोस में इंस्पेक्टर देव यानी कि मिलिंद गुना जी अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए आते हैं। जो देव हैं वो बहुत ज़्यादा शक्की, गुस्से वाले और अजीब अजीब किस्म के इंसान हैं, और अपनी पत्नी के ऊपर लगातार शक करते हैं, और मतलब हर वक्त उनके बीच में झगड़े और गलत चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरी तरफ रोहन और सुमन बार बार बीच बचाव भी करते हैं, उस लड़की को बचाते भी हैं, पत्नी की उसकी मदद भी करते हैं, जिसकी वजह से जो देव है वो रोहन से नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ बोले तो मतलब वो उनसे एक तरह से रंजिश रखने लगते हैं कि ये हमारे मामले में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। और एक दिन क्या होता है, इंस्पेक्टर देव अपनी पत्नी जो उनकी पत्नी है उनकी हत्या हो जाती है, और बड़ी चालाकी से देव सारे सबूत इस तरह से दिखाते हैं कि जो सारा इल्ज़ाम होता है वो आता है डॉक्टर रोहन के ऊपर। रोहन जो कि निर्दोष हैं, उसके बावजूद पुलिस उनको ले जाती है गिरफ्तार करके, लेकिन उनकी पत्नी सुमन साबित करने पर लग जाती है, ये तलाश करने लगती है, अपने पति को बेगुनाह साबित करने में पूरी तरह से जुट जाती है, और जांच के दौरान उसे पता चलता है कि जो ये मर्डर हुआ है देव की पत्नी का, वो कोई सिंपल मर्डर नहीं है, बल्कि देव ने पूरी तरह से एक साजिश रची है जिसमें वो रोहन को फंसा सके, उसको फंसा करके जेल करे और सुमन को हासिल कर सके। लेकिन अंत भला तो सब भला, और वही होता है अंत में, सुमन और रोहन मिलकर इंस्पेक्टर देव के जो खतरनाक इरादे होते हैं उन सब का पर्दाफाश करते हैं, और रोहन बेगुनाह साबित होते हैं, बरी होते हैं, और बुराई की हार होती है, और भाई जो सच्चाई होती है वो जीत जाती है।

दोस्तों, अगर हम बात करें इस फिल्म के कलाकारों की, तो इस फिल्म में जैसे कि हमने आपको बताया कि जो लीड एक्टर हैं वो हैं फराज खान, जिन्होंने कि डॉक्टर रोहन का किरदार निभाया इस फिल्म में, और वो यूसुफ खान, जो कि मशहूर विलन रहे हैं अपने वक्त के, उनके पुत्र हैं, उनके बेटे हैं, जिन्होंने अमर अकबर एंथनी में भी काम किया था. और सबसे बड़ा ब्रेक उनको मिला फिल्म फरेब में. धमाकेदार उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, और उनकी जो सादगी थी, उनकी जो मासूमियत थी, और जिस तरह से उन्होंने इमोशनल जो एक्टिंग की है इस फिल्म में, वाकई में वो काबिले तारीफ थी. और ये वो फिल्म थी जिसके बाद उन्होंने बहुत सी और भी फिल्मों में काम किया, और उन्होंने इसके बाद मेहंदी फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ भी काम किया. लेकिन आपको बता दें कि 1989 की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म है मैंने प्यार किया, इस फिल्म में प्रेम का जो किरदार है वो पहले फराज खान को मिलने वाला था, लेकिन एन मौके पर वो बीमार हो गए और उसके बाद वो शूटिंग नहीं कर पाए, और ये रोल मिला फिर सलमान खान को. आप सोचिए, सलमान खान को अगर वो फिल्म नहीं मिलती तो वो जो इतनी खूबसूरत सुपर डुपर हिट फिल्म रही. खैर, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं इस फिल्म की एक और नवोदित कलाकार के बारे में. वो हैं सुमन रंगनाथन. भाई, वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए ज़रूर नहीं थी, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में, यानी कि कन्नड़, तमिल, मलयालम सिनेमा में वो एक जानी पहचानी अभिनेत्री थी. वहाँ पर उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं थी, और ये फिल्म बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली हिंदी फिल्म थी. और ये फिल्म के बाद वो रातों रात अपनी खूबसूरती और इस फिल्म के गीतों की वजह से एक अलग ही सेंसेशन बन गई, और उसके बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों में काम किया. आओ अब लौट चलें, कुर्सी, बागी और बाजार जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया. और अब बात करते हैं इसी फिल्म के एक और खास और अहम किरदार, मिलिंद गुनाजी के बारे में. जी हाँ दोस्तों, मिलिंद गुनाजी, जिन्होंने कि इस फिल्म में इंस्पेक्टर देव का किरदार निभाया, और एक ऐसे अजीब से भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया, और अपनी आवाज़, लंबी कदकाठी और ख़तरनाक एक्टिंग से उन्होंने वाकई में फिल्म में पूरी तरह से जान डाल दी, और शायद यही वजह थी कि इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट विलन का नॉमिनेशन भी मिला. जी हाँ दोस्तों, पहली ही फिल्म से नॉमिनेशन भी मिला, तो वाकई में दमदार तो रहा होगा उनका अभिनय. तो चलिए, बातों का सिलसिला आगे जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी हम सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से, उदित नारायण की आवाज़ में.

दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हम बात कर रहे हैं 1996 में आई फिल्म फरीब के बारे में, जिसको निर्देशित किया बगम भट्ट ने। हमारे पास बहुत से संदेश भी आए हुए हैं जिनको हम शामिल कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम में। और ये अगला ये संदेश हमारे पास आया है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से, नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन का। और दोस्तों, अगला जो संदेश है उसको भेजने वाले हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह के साथ राजेंद्र जी शाह। तेलंगाना निज़ामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया और शेख रहीम मुन्ना। मेरठ से जुड़े हैं कविता और दिग्दर्शन गौड़ हमारे साथ, यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या, विरल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश आया है उसको भेजने वाले हैं अजित भावसर जी, और इन्होंने हम तक बहुत ही खूबसूरत जानकारी भेजी है। लिखते हैं कि 1996 की आई ये फिल्म फरेब अपने दौर की काफ़ी ज़्यादा चर्चित और सुपरहिट फिल्म थी। और लिखते हैं कि इस फिल्म की जो कहानी है वो हॉलीवुड फिल्म से ली गई है। और लिखते हैं कि इसी साल हॉलीवुड से प्रेरित होकर एक और फिल्म आई थी, सनी देओल और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म थी टक्कर, लेकिन फरीब को दर्शकों ने कहीं ज़्यादा पसंद किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। और लिखते हैं कि मुख्य किरदार निभाने वाले फराज खान की स्क्रीन प्रेजेंस को तो सराहा गया, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में फराज खान की असली आवाज़ नहीं थी। लिखते हैं कि ख़राब डिक्शन या फिर कहें कि निर्देशक की पसंद के वजह से उनके पूरे डायलॉग्स किसी और दूसरे वॉइस एक्टर की आवाज़ में डब कराए गए थे। बहुत खूबसूरत जानकारी आपने दिया अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुधाकर राजा जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजा जाधव, जगुताई कुमार, संचित, प्रथमेश, सर्वद, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख हमारे साथ जुड़े हैं। गांव भरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरामणि वर्मा जी जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा से। वडिंगखेड़ा से जुड़े हैं, वडिंगखेड़ा पंजाब से जुड़े हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और संदीप मकर, ज्योति मन्नत, भारत और मकर जुड़े हमारे साथ, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गुरैया जालंधर से। और ये इशाक मोहम्मद जी जुड़े हैं चूड़ी छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीतार गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डी बी राणा जी जुड़े हैं नेहरू विहार दिल्ली से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लला, पूजा प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू के साथ। सहारनपुर से जुड़े हैं

सैयद मशरूर, साइना अदीब, नाजिया इब्राहिम हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा जी, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहर के साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि इस फिल्म के गीतकार इंदिवर, इन गीतकार इंदिवर के लिखे हुए गीतों से इस फिल्म को सजाया गया था। जतिन ललित जी का संगीत और उनको आवाज़ दी कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण जी के साथ अभिजीत ने। और बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। भंवरपुर बसना से जुड़े हैं राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, अक्षय कुमार देवांगन। और ये अगला संदेश हम तक आया, इसको पहुंचाने वाले हैं एक बार फिर से राजकुमार डूडी जी, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर। विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं मलकापुर महाराष्ट्र से, नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुरहेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फजिलका पंजाब खेड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं, भूषण खेड़ा, विशु, विशाल लाड़ी, शालिनी तिवानशी खेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है वो हम तक आया, उसको भेजने वाले हैं फारूक अली खान। ये कहाँ से संदेश भेज रहे हैं जानकारी इन्होंने हम तक नहीं दी है। जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पल्स और विलिस डिकेस्ट्रो के साथ में। ये संदेश जो आया है हमारे पास अगला, इसको इस संदेश को अगले संदेश को भेजने वाले हैं गुरमीत सिंह जी, गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला संदेश भेजने वाले हैं पहाड़गंज मुल्तानी ठाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जी के साथ में। और अगला संदेश जो है शिवा गोप प्रेम, कपिल शिवांश और संगीता गोप, लिपि गोप के साथ में आया है, इसको भेजा है इन्होंने जिला पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से। कविता गौड़ और दुखदर्शन गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ से। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखिया, अनिता सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। जी दोस्तों, ये थे वो सभी संदेश जिन संदेशों के जरिए आप सभी हमसे जुड़े और आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा उसके लिए बेहद शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और हम आज इस कार्यक्रम में एक ही फिल्म में हमने बात की, फिल्म फरेब के बारे में, जो कि 90s की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही, काफ़ी ज़्यादा हिट फिल्म थी, प्यार, सस्पेंस और म्यूज़िक के जादू से भरी हुई फिल्म फरेब का ये जो सफ़र है इसको हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा और जो उस वक्त की कुछ यादें हैं वो ज़रूर ताज़ा हो गई होंगी। तो ये जो फिल्मों का कारवा जो है अभी हम इसको रोकते हैं, छोड़े जाएंगे आपके लिए एक और खूबसूरत संगीत कुमार सानू की आवाज़ में, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि 2:30 पर एक बार फिर से हाजिर होंगी आपके साथ अंजू पांडे, होंगी आप सभी की पसंदीदा आरजे, और 3 बजे मैटिनी मेलेडीज के साथ एक बार फिर से मैं यानी कि प्रीति त्यागी हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 1:40 होने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों नूं AI दी नवी तकनीक इंटरनेट अते डाटा दी सही इस्तेमाल करन दी अपील की थी। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि टैक्स प्रशासन कागज तो डाटा संचालित अते डिजिटल संचालित प्रणालियां वल वध रहा है। पंजाब दियां पंज सहकारी खंड मिलां ने माली प्रबंध गन्ना विकास ते तकनीकी कुशलता लई राष्ट्रीय अवार्ड जीते ने। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने अज 8 साल पूरे कर ले ने ते ओलंपिक तमगा जेतू मीराबाई चानू ने जापान विच एशियाई खेडां विच औरतां दे भार चुक्कण दे मुकाबले दी 49 किलोग्राम श्रेणी च चांदी दा तमगा जित्तिया है। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों नूं AI दी नवी तकनीक इंटरनेट अते डाटा दा सही इस्तेमाल करने दी अपील की थी। राष्ट्रपति ने अज गुजरात के वडोदरा विखे महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के 75वें कन्वोकेशन समारोह च विद्यार्थियों नूं कहा कि डेटा तुहानूं सूचना दे सकदा है पर फैसला तुहाडा होएगा।
2: अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकते हैं लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है। डेटा आपको सूचना दे सकता है लेकिन उस सूचना के नैतिक उपयोग कैसे करना है ये निर्णय आपको ही करना है।
1: राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों नूं जियो ते जियो जीवन दियो दी सोच नाल अगे वधण नूं कहा। उन्होंने विद्यार्थियों नूं साल 2047 तक विकसित भारत दे टीचे नूं हासिल करन च योगदान पाउण लई भी कहा।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
1: उन्हां सिख्या समेत वख-वख खेतरां विच औरतां दी वध रही हिस्सेदारी दी भी शलाघा की थी। कन्वोकेशन समारोह दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,000

0: लोगों से अपील की गई है कि वो इंतजामिया की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल दरामद करें। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए नीतिका त्यागी।
1: जापान में एशियाई खेलों में ओलंपिक में तमगा जीतने वाली मीराबाई चानू ने खवातीन के 49 किलोग्राम जुमरे के वेटलिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करते हुए एशियाई खेलों का अपना पहला तमगा जीता। इसके साथ ही भारत के तमगों की मजमूई तादाद 9 हो गई। भारत की तीन खिलाड़ियों महेश्वरी चौहान, परीनाज धालीवाल और रायसा ढिल्लों ने खवातीन की टीम के स्कीट निशानेबाजी के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। एक दूसरे मुकाबले में मर्दों के सॉफ्ट टेनिस में भारत के जयमीना ने इस खेल में अपना पहला तमगा जीतकर तारीख रकम की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में ब्रिक्स टैक्स सरबराहान के इजलास का इफ्तिताह किया और आलमी सतह पर होने वाले टैक्स मुजाकरात में ब्रिक्स की मजबूत आवाज की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय रेलवे ने पहली मरतबा जनूब वस्ती रेलवे पर कवच 4.0 नस्ब करने का अमल शुरू किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने पूरे मुल्क में आवामी सेहत की सहूलियात तक रसाई को तब्दील करने के 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। खलीज बंगाल के ऊपर बना हवा का गहरा दबाव साहिल के करीब आ रहा है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों में शदीद बारिश जारी है और एशियाई खेलों 2026 में जापान में भारतीय मर्दों और खवातीन की स्की टीमों ने कांसे के तमगे जीते। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में चांदी का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी and I am Anubha Rohatgi with the Midday News. The headlines. President Draupadi Murmu says youth efforts will propel India to a developed nation before 2047. Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurates BRICS tax heads meeting in Delhi. Calls for stronger BRICS voice in global tax negotiations. Indian Railways commissions coverage 4.0 for the first time on South Central Railway. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana marks 8 years of transforming public healthcare access across India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discusses collaboration in AI, space, energy with counterparts from UAE and France. Deep depression over Bay of Bengal moves closer. Heavy rain lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games 2026, Indian men's and women's skeet teams win bronze medals in Japan. Mirabai Chanu wins silver in weightlifting. President Draupadi Murmu has expressed confidence that India will become a developed nation even before 2047 through the efforts of the youth. Addressing the 75th convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda in Vadodara today, she said that education becomes meaningful only when it is put to use for the nation and society.
3: मैंने देखा कि इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या ज्यादा है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है जो देश के अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का शुभ संकेत है कि हमारे देश समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: The president said that technological transformation is taking place in every field today. She added that a multidisciplinary approach is the solution to many of the challenges being faced today. She also appreciated the increasing participation of women in various fields, including education. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the decisions taken in the ongoing multilateral tax negotiations over the next few years would shape cross-border taxation for a generation. Addressing the inaugural session of the BRICS tax heads meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said, the BRICS countries are large developing economies and source jurisdictions that have built significant domestic tax capacity from a low base, and their perspective is essential to making these negotiations fair and lasting. Talking about tax administrations, Ms. Sitharaman said they are moving from paper-based and relationship-dependent processes to data-driven and digital systems. She added that India's experience with faceless assessment, pre-filled returns, real-time invoice authentication, and AI-enabled taxpayer assistance has a

0: President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Parinaash Dhaliwal, Raisa Dhillon and Maheshwari Chauhan on winning the bronze medal in the women's skeet team event at the Asian Games. Prime Minister Modi also congratulated Mirabai Chanu on winning silver medal in the women's 49-kilogram weightlifting event. The International Day of Sign Languages is being observed today. The Union Social Justice and Empowerment Minister, Dr. Virendra Kumar, said that the sign language is a powerful bridge for communication, expression and inclusion. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says youth efforts will propel India to a developed nation before 2047. Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurates BRICS tax heads meeting in Delhi, calls for stronger BRICS voice in global tax negotiations. Indian Railways commissions coverage 4.0 for the first time on South Central Railway. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana marks 8 years of transforming public health care access across India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discusses collaboration in AI, space, energy with counterparts from UAE and France. And in Asian Games 2026, Indian men's and women's skeet teams win bronze medals in Japan. Mirabai Chanu wins silver in weightlifting. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला स्की टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
2: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
1: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
2: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगी। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण

0: अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली तीन व्यापक क्षेत्रों प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
1: Look at what has emerged from the BRICS.
2: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
1: A durable institutional shape.
0: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
5: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं।

0: ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है, क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
2: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
1: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
3: माय नेम इज रमेश।
4: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूं। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूं। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था, वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूं।
3: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
1: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जान नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
6: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंत जीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवदेव सिंह गिल

0: टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लो की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला इसकी टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम, नाम है जिसका एक ही कलाकार। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, कभी कभी कोई आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वो सीधे दिल में उतर जाती है। कभी वो आवाज पहली मोहब्बत की याद बन जाती है, कभी किसी अधूरे खत का एहसास, और कभी कॉलेज के उन दिनों की तस्वीर जब रेडियो पर बजता था कोई गीत और हम अनजाने ही गुनगुनाने लगते थे। 90 का दशक, हिंदी फिल्म संगीत का वो दौर जब मोहब्बत को शब्द मिलते थे, धुन मिलती थी और उन धुनों को एक बेहद पहचानने वाली आवाज मिलती थी। और वो आवाज कौन थी? वो आवाज थी वही आवाज। आज हम उस सितारे को चुनकर लाए हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक ही कलाकार। और आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप भी हमेशा की तरह मेरे साथ इस सफर में मेरे हम सफर बन सकते हैं संदेश के जरिए। और संदेश भेजने के लिए मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। ये वो तरीका है जिसके जरिए आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस खूबसूरत सी आवाज का ही एक खूबसूरत से गीत के साथ। और आप पहचानिए जवाब मिलने के बाद, जानने के बाद तुरंत इस मेल पर हमें भेज दीजिए। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

तो अब तो आप समझ ही गए कि आज हम इस कार्यक्रम में किस सितारे की बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे उस गायक की जिसकी आवाज ने पूरे दौर को रोमांस का संगीत दिया। तो शुरुआत हमने इस खूबसूरत से गीत के साथ करी जो हमने क्रिमिनल फिल्म से लिया था, और अब उस फिल्म का गीत आपको सुनवाएंगे जिसके कारण कुमार सानू को घर घर में पहचान मिली थी, 1990 की फिल्म आशिकी। याद है ना आपको, नदीम श्रवण के संगीत और समीर के गीतों से सजी इस फिल्म के संगीत ने तहलका मचा दिया था। कुमार सानू ने इस एल्बम में लगभग सभी जितने भी मेल आवाज के गीत थे वो गाए थे, और यहीं से उनकी आवाज 90 के दशक की सबसे चर्चित आवाजों में शामिल हो गई थी। और इस फिल्म का गीत अब तेरे बिन जी लेंगे हम, इस गीत के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से उन्हीं की आवाज में अनुराधा जी के साथ ये खूबसूरत सा गीत।

0: करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार, और आज हम जो सितारा लेकर आए हैं उसका नाम है केदारनाथ भट्टाचार्य। आप भी कंफ्यूज हो गए ना। वैसे हम जानते हैं कि आप अच्छे सर तरीके से जानते हैं कि कुमार सानू का जो असली नाम था वो क्या था। वो था केदारनाथ भट्टाचार्य। संगीत उनके लिए कोई अचानक मिली हुई मंजिल नहीं थी। उनके पिता पशुपति भट्टाचार्य खुद गायक और संगीतकार थे, यानी कि घर के वातावरण में संगीत पहले से ही मौजूद था। बचपन से ही संगीत की तरफ उनका झुकाव रहा। आगे चलकर उन्होंने गायकी को अपना जीवन बना लिया। लेकिन मुंबई की फिल्मी दुनिया में पहचान बनाना आसान नहीं था। शुरुआती दौर में तो सानू भट्टाचार्य के नाम से वो गाते थे। बाद में उन्हें मिले जगजीत सिंह। उन्हें जगजीत सिंह ने कल्याण जी से मिलवाया। कल्याण जी आनंद जी के सुझाव पर उनका नाम कुमार सानू रखा गया, जिसमें उनके आदर्श किशोर कुमार के नाम की भी झलक मिलती है। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास बदल दिया।

इसके बाद फिल्म जादूगर में कल्याण जी आनंद जी के साथ काम करने का इनको मौका मिला, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें स्टार प्लेबैक सिंगर बना दिया वो थी फिल्म आशिकी। कहा जाता है कि इस फिल्म के गीतों की लोकप्रियता इतनी बड़ी थी कि फिल्म के संगीत ने ही फिल्म की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और यही वो समय था जब कुमार सानू की आवाज़ को एक खास पहचान मिली, मुलायम, भावुक और रोमांटिक आवाज़। तो हमने आपको आशिकी का गीत तो सुनवा ही दिया है, और भी बहुत सारे गीत हैं इनके गाए हुए, और सच मानिए कि आज उन गीतों में से कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं ये चूज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आशिकी के बाद तो जैसे कुमार सानू के लिए सफलता के दरवाजे खुलते चले गए, साजन, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, दीवाना, बाजीगर, 1942 ए लव स्टोरी, राजा हिंदुस्तानी, परदेश और ऐसी ही अनेक फिल्मों के गीतों ने उन्हें श्रोताओं के दिल में खास जगह बना दी। नदीम श्रवण, अनु मलिक, जतिन ललित, आर डी बर्मन जैसे संगीतकारों के साथ उनका काम यादगार रहा। उनकी आवाज़ खास तौर पर रोमांटिक गीतों के लिए बेहद लोकप्रिय हुई।

जी हाँ, इस आवाज से तो हम सभी को प्यार है। कुमार शानू के शुरुआती जो हिंदी फिल्म का जो सफर था, वो हीरो हीरा लाल का जो नाम है फिल्म, उस नाम से हीरो हीरा लाल फिल्म से नाम इनका जुड़ा था।

और अब हम आपको कुमार सानू के करियर की एक असाधारण उपलब्धि बताते हैं। उन्होंने लगातार 5 वर्षों तक फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जीता था। उनकी ये जीत इन फिल्मों के गीतों के लिए रही, जैसे कि 1991 में फिल्म आशिकी गीत था अब तेरे बिन, 1992 में फिल्म साजन मेरा दिल भी कितना पागल है, 1993 में फिल्म थी दीवाना सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, 1994 में फिल्म बाजीगर ये काली काली आंखें और 1995 में 1942 अ लव स्टोरी एक लड़की को देखा। तो 5 लगातार फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने आप में उनके 90 के दशक के प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब मैं आपको वो गीत सुनवा रही हूँ जो मेरी जो फेवरेट लिस्ट है उसमें शामिल है, और उम्मीद करती हूँ कि आपका भी ये पसंदीदा गीत होगा। सुनते हैं।

संगीत की दुनिया में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2009 में कुमार सानू को पद्मश्री से सम्मानित किया। बंगाली संगीत की दुनिया से लेकर हिंदी फिल्म संगीत और अन्य भारतीय भाषाओं तक उन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए हैं। कुमार सानू को भले ही हिंदी सिनेमा के रोमांटिक गीतों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता हो, लेकिन उनकी गायिका का दायरा इससे कहीं बड़ा है। उन्होंने बंगाली के अलावा मराठी, नेपाली, असमिया, भोजपुरी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया

तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सहित कई भाषाओं में गाया। यानी इनकी आवाज की जो यात्रा है वो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। आपके बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं, वक्त हो गया कि उन संदेशों को हम शामिल कर लें। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख रही मुन्ना जी हमारे साथ हैं। अजीत भापसर जी ने प्रमिला भापसर जी के साथ वीरनगांव से हमें संदेश भेजा है बहुत सारी जानकारी के साथ। और ताज मोहम्मद अंसारी गुबार जी हमारे साथ लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जुड़े हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती जी हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी, निगत परवीन शनिवास, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान और परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, शुक्रिया आपका भी। देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी, कवि रेडियो, श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से हैं। शिवा गो, प्रेम गोप पश्चिम सिंहभूम चाईवास झारखंड से जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जी हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल जी हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी, ज्योति जी के साथ हमें जालंधर से सुन रहे हैं। मेरठ केंट से कविता और दिग्दर्शन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये संदेश हमारे पास पहुँचा है सचिन प्रजापति, कुश पूरा परिवार, प्रजापति परिवार गाँव सिरसा से

लाइक और संदेश आए। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हैं, तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगले प्रोग्राम मैचिनी मेलोडीज के लिए प्रीति जी स्टूडियो में पहुंच गई हैं। इस खूबसूरत से गीत के साथ अब मुझे यानी अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, परसों यानी शुक्रवार को एक बार फिर आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है पूरे 3:32 सेकेंड, और वक्त हुआ आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ का। मैटिनी मेलोडीज़ कार्यक्रम जिसमें हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए उस गोल्डन इरा के वक्त के गीत, उस सुनहरे दौर की यादों को ताज़ा करते हुए वो गीत हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हमने किया है, तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: बेकरार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।

मेरा दिल तेरी। जी दोस्तों, कार्यक्रम मैटिनी मेलेडीज में आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम मैटिनी मेलेडीज, और जो अभी आपने गीत सुना उसको सुनकर वाकई में एकदम मस्ती का मूड हो गया ना। वाकई, क्योंकि जो हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें फिल्मों में अगर जहाँ बहुत ज़्यादा दुख, उदासी, या अगर कहें कि एक तरफ बहुत प्यार, रोमांटिक सब चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरफ जो तड़का लगता है ना कॉमेडी का, वाकई वो फिल्म को एक अलग ही तरह के लेवल पे पहुंचा देती है ना। चाहे कितनी भी सीरियस फिल्म हो, लेकिन उस फिल्म में कहीं ना कहीं कॉमेडी का थोड़ा बहुत तो पुट ज़रूर होता है। भाई अगर हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात हो और उसमें फिल्मों में कॉमेडी की बात ना हो ही नहीं सकता भाई। कॉमेडी के बिना तो हमारी ये पूरी फिल्मी दुनिया ना बिल्कुल बेकार है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम गोल्डन एरा के बारे में बात करें, और ये जो गीत अभी आपने सुना है ना, किशोर कुमार जी जो कि कॉमेडी तो करते ही थे, कॉमेडी में तो एक उनमें अलग महारत हासिल थी और वो संगीत की दुनिया में भी महारत हासिल किए हुए थे, लेकिन कॉमेडी में तो मतलब एक अलग ही लेवल पर उनका कॉमेडी हुआ करती थी। और उनके साथ अगर हम बात करें उस वक्त की, यानी कि 50 के दशक की कॉमेडी की अगर बात करें, तो अलग अलग तरह की कॉमेडीज़ हुआ करती थी उस वक्त की फिल्मों में। मतलब आप बहुत सैड चीज़ें चल रही हैं और उस बीच में थोड़ा सा एकदम से कॉमेडी का तड़का लग जाता था, और क्योंकि उस वक्त की जो दुनिया थी उसमें सिनेमा और जो था उसमें उम्मीदें हुआ करती थी मनोरंजन की, और मनोरंजन का सबसे बढ़िया ज़रिया जो था वो बॉलीवुड सिनेमा में कॉमेडी थी। जी हाँ, और उस वक्त ही रखी गई थी ठोस नींव, अगर कहें ना कि ठोस नींव जो रखी गई वो 50 के दशक में रखी गई। और ये वो दौर था उस वक्त जो बहुत ही जो कॉमेडी थी, या कहें कि जो हास्य था, वो बहुत ही मासूम सा था। उसमें फूहड़पन नहीं था बल्कि सादगी थी, भुलक्कड़पन था, और मासूम सी छोटी छोटी गलत फहमियाँ या गलतियों के सहारे लेकर के कॉमेडी को पैदा किया जाता था, कॉमेडी का रूप दिया जाता था। और उस वक्त की सबसे बड़ी बात, या कहें कि सबसे ख़ास बात ये थी कि उस वक्त में कॉमेडी गाने जो थे ना वो भी पर्दे पर बहुत ही आए थे, और उन्हीं में से एक गीत हम आपको अभी सुनवाने वाले हैं। कैसी बहुत ही धीमी, या कहें कि बहुत ही एक संवेदनाओं से भरी हुई फिल्म, और उस फिल्म के बीच में ये खूबसूरत सा कॉमेडी का रूप लिए हुए प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। और बातें करेंगे, पहले इस गीत को पहले हम सुन लेते हैं, उसके बाद बाकी की बातें।

0: जी बिल्कुल सर, जो तेरा चकराए, मतलब आप देखेंगे कि इस गीत में कोई ऐसे कॉमेडी नहीं, लेकिन जो हाव भाव थे, जिस तरह के उन्होंने हाव भाव किए हैं इस गीत में, उसी से कॉमेडी पैदा हो गई। मतलब कोई फूहड़पन नहीं, कोई फालतू के भद्दे मजाक नहीं, लेकिन कॉमेडी फिर भी भरपूर, और इतनी कि हर कोई अपना पेट पकड़कर हंसने को मजबूर। जी हाँ, और 50 का दशक ऐसा था जब हिंदी सिनेमा को ऐसे बेहतरीन सितारे मिले जिनकी कॉमिक टाइमिंग आज भी मिसाल है। भगवान दादा, जिनकी फिल्म अलबेला, ढीला ढाला कुर्ता, अनोखा सा डांस स्टाइल और सीधा साधा अंदाज, और उनके उसी अंदाज पे पूरी दुनिया थिएटर में झूम उठती थी। और जॉनी वॉकर, जिनका भी आपने गीत सुना, गुरुदत्त साहब की खोज, जी हाँ, मिस्टर 55, प्यासा जैसी फिल्मों में उन्होंने जो किरदार निभाए हैं ना, वाकई गजब। शराब पिए बिना शराबी का किरदार वो इतनी आसानी से निभाते थे, और ये जो गीत आपने सुना, ये तो इस फिल्म का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा था, है ना भाई। उस वक्त में इतने सारे जो कॉमेडी के सितारे थे वो हमें मिले, और जैसा मैंने आपको बताया था कि किशोर कुमार जी, जो कि सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि म्यूज़िक में भी उनके पास महारत हासिल थी, और उसका जिक्र हो, मतलब उनका जिक्र हो, और 1958 में आई उनकी फिल्म चलती का नाम गाड़ी का जिक्र ना हो ही नहीं सकता ना, जिसमें तीनों कुमार भाई, अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार, तीनों ने मिलकर जो एक म्यूजिकल कॉमेडी की है ना, वाकई में बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही। वैसे उसी फिल्म का गीत जो है वो हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन आप ज़रूर हमें बताइएगा कि कोई ऐसी कॉमेडी फिल्म, कोई ऐसा कॉमेडी गीत जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतज़ार, जो कि आप हमारे पास भेज सकते हैं iprediodelhi@gmail.com पर। तब तक सुनते हैं ये गीत
1: बाजू।

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम
2: जी बिल्कुल जो समझा उसी की मची धूम वैसे ही जो हमारे लिसनर समझे उन्हीं की धूम है ना बिल्कुल। और हमारे पास देखिए कितने सारे संदेश आ चुके हैं और ये संदेश हमारे पास आया है ग्राम कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े योगिता कुमारी प्रियाली पार्थ और हागोड़े परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर ये संदेश हम तक पहुंचाया है। देवशंकर तामुरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं अजय देव तुषार देव डॉली बेबी पूजा राधिका और मास्टर कबीर के साथ और लिखते हैं कि गोल्डन इरा का जो ये प्रोग्राम है उसमें आप आए बाहर आई और साथ ही साथ उन्होंने गीत की फरमाइश की। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शांतिनगर सोनीपत से शोभापुर दिल्ली देहरादून हाईवे मेरठ से दिग्दर्शन गौड़ और कविता जी हमारे साथ जुड़े हैं और ये संदेश हम तक पहुँचा है अजीत भावसर जी ने बीरगांव गुजरात से। लिखते हैं कि गोल्डन इरा के आप सॉन्ग हमें सुनवा रहे हैं उसमें हमें हाफ टिकट से शामिल कर लेना और प्रवेश दे देना। प्रवेश के बाद सुन रहा हूँ फिल्म प्यासा से जॉनी वॉकर का से तेल मालिश करवा रहा हूँ और अच्छी मालिश करके शांति से मैटिनी मेलोडी सुन रहा हूँ लाजवाब गीत कलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया। लेकिन कौन सा ऐसा कॉमेडी गीत है जो कि आपके दिल के करीब है ज़रूर आप हमें बताइएगा। और ये इन्होंने हम तक भेजा अगला संदेश देवशंकर तामुरिया जी का, लिखते हैं कि हमें ये कॉमेडी गीत बहुत पसंद है और इन्होंने ये गीत भेजा है फिल्म सत्ते पे सत्ता से। बिल्कुल कोशिश रहेगी कि हम आपको ये गीत सुनवाएं। और अगला संदेश जो है वो हमारे पास आया है और इसको भेजने वाले हैं जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक गीता निहारिका और सुशांत नायक जी का। और ये अगला संदेश भेजने वाले हैं हमारे पास बीरगांव गुजरात से अजीत जी और उन्होंने भी एक बहुत ही खूबसूरत से गीत की फरमाइश की है। तो दोस्तों हम गीतों के बारे में बात कर रहे हैं कॉमेडी गीतों के बारे में स्पेशली और जैसा कि हमने बताया आपको कि 60 का जो दशक आते आते कॉमेडी में और भी ज़्यादा बदलाव आए और मतलब आप कह सकते हैं कि 50 के दशक से जैसे हम 60 के दशक में आए हैं तो एक अलग ही तरह का उसमें चेंजेस आए और जो कॉमेडी जो कि अभी तक एक साइड कैरेक्टर के उसमें था कि मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा सा कॉमेडी जो है फिल्म में दे देते थे थोड़ा सा इमोशनल या जो थोड़े सेंटिमेंटल वाले सीन आते थे उनके बाद थोड़ा सा लोगों को हंसाने के लिए या मन हल्का करने के लिए कॉमेडी का पुट डालते थे। लेकिन 60 का दशक आते आते साइड रोल बंद हो गए बल्कि पूरी तरह से एक बड़ा कमाई की गारंटी बन गई फिल्म में कॉमेडी का होना। जी हाँ दोस्तों और उस वक्त में जो उस वक्त के कॉमेडी किंग थे वो थे महमूद। जी हाँ उनके बिना कोई भी ऐसी फिल्म नहीं मानी जाती थी कि कोई भी फिल्म पूरी है जब तक उस फिल्म में महमूद की कॉमेडी ना हो। कोई भी रोमांटिक या फैमिली ड्रामा हो लेकिन साथ ही साथ उसमें चलता था कॉमेडी का ट्रैक। जी हाँ उसी में से एक खूबसूरत सा गीत हम आपके लिए चुनकर लाए हैं फिल्म गुमनाम से जहाँ की मर्डर मिस्ट्री चल रही है लेकिन उसी के बीच में महमूद जी ने डाला ये खूबसूरत सा कॉमेडी का ट्रैक है ना। वाकई में पूरी फिल्म में जहाँ पूरी सब लगे हुए हैं कि भाई किसका मर्डर हो रहा है क्या हो रहा है कौन मर गया है और सब टेंशन में है लेकिन उसी के बीच में महमूद जी की कॉमेडी लोगों के दिमाग को थोड़ा शांत करने का काम करती। तो लीजिए सुनते मोहम्मद रफ़ी और महमूद जी की खुद की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत गुमनाम।

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं?
1: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं

दोस्तों, हैदराबादी मट्टू का किरदार इतनी खूबसूरती के साथ निभाया कि इस फिल्म को लोगों ने सिर्फ महमूद जी की वजह से न जाने कितनी बार देखा होगा। महमूद जी एक ऐसे कलाकार थे उस दौर के जिनका पोस्टर पर एकदम फ्रंट में फ़ोटो हुआ करती थी हीरो हीरोइन के साथ में, ना कि किसी साइड कैरेक्टर के रूप में। और वो अगर किसी फिल्म में है तो वो गारंटी माना जाता था कि भाई ये फिल्म तो पक्का हिट होगी। और उस वक्त में इतनी सारी हिट फिल्में आई जिसमें कि इन्होंने कमाल की कॉमेडी की, चाहे वो फिल्म हो प्यार किए जा 1966 में आई शशि कपूर जी के साथ में, किशोर कुमार जी के साथ में। और इस फिल्म को तो कॉमेडी ऑफ एरर भी माना जाता है। और अगर कॉमेडी की बात हो, महमूद जी की बात हो, किशोर कुमार जी की बात हो, और उस वक्त की फिल्म पड़ोसन का जिक्र ना हो, इम्पॉसिबल भाई। इसको तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे महान कहेंगे हम, म्यूजिकल कॉमेडी में से माना जाता है, जिस फिल्म में महमूद, किशोर कुमार और सुनील दत्त साहब की जुगलबंदी है, जिसने कि कॉमेडी में एक नए मापदंड, एक नए ही माइलस्टोन जो थे वो सेट किए। वाकई में बहुत ही खूबसूरत फिल्म, और इतनी खूबसूरती के साथ इसको लिया गया, इतनी खूबसूरती के साथ उन गीतों को और इन सब को जोड़ा गया कि कमाल की फिल्म बनकर तैयार हुई। वैसे दोस्तों, अगर हम 60-70 या कहें कि हमारे गोल्डन एरा की कॉमेडी की बात करें तो वक्त तो हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि इतने से वक्त में उस गोल्डन एरा की कॉमेडी की बातों को हम नहीं समेट सकते हैं। और वही है, क्योंकि वक्त की जो सुइयाँ हैं, जो घड़ी की सुइयाँ हैं, वो हमसे कह रही हैं कि भाई अब हमें आपसे अलविदा करना होगा। अलविदा हम आपसे लेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे चाहूँगी इस कार्यक्रम की समाप्ति की अनुमति, और छोड़े जाऊँगी आपके लिए खूबसूरत सा गीत एक खूबसूरत सी फिल्म पड़ोसन से। जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार मनाड़े जी की आवाज़ में खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़ कर के मैं जाऊँगी, लेकिन ऐसी उम्मीद के साथ कि आप यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, और अपने आस पास में भी हर किसी को हंसी का जो तोहफा है वो गिफ्ट करते रहें। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: gare gare
1: ye zara pada je
0: gare gare
1: ye sura badal
0: gare gare gare
1: ye amko badla
0: gare gare
1: ye sura ki tarah je.
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 3:30 होने को है, लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
3: सामईन की खिदमत में फरीन इकबाल का पुरखलूस आदाब। पेश ये प्रोग्राम अक्से अदब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हुकूमत हिंद का एक अहम फलाही मंसूबा है जिसका आगाज़ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका बुनियादी मकसद बच्चों का तहफ़ुज़ है। बच्चों की पैदाइश के वक्त शरह तनासुब में कमी को रोकना, लड़कियों को मियारी तालीम फराहम करना और इन्हें माशरे में बराबर के हकूक़ दिलाना है। खातीन और बच्चों को माशी और माशरती तौर पर खुद कफील और बाख्तियार बनाना है। यह मुहिम वजारत खातीन व इतफाल की बहबूद, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वजारत सेहत ख़ानदानी बहबूद, इंसानी वसाइल की तरक्की का मुश्तरक इकदाम है। इस स्कीम का मकसद माशरे में लड़कियों की पैदाइश और तालीम से मुतालिक मस्बत सोच पैदा करना और बेदारी फैलाना है। तो आइए सामईन अब चलते हैं प्रोग्राम अक्से अदब की तरफ। सामईन, हमारे अदबी सरमाए में शेरी और नसरी जितने भी असनाफ़ हैं उनमें मुख्तसर अफसाने की उम्र बहुत कम है। उसने एक सिनफ अदब की हैसियत से 20वीं सदी की इब्तदा में जन्म लिया था और अब तक इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अफसाना हमारी समाजी और माशरती ज़िंदगी का अक्कास होता है क्योंकि मुख्तसर अफसाने का पैमाना महदूद होता है, इसलिए अफसाना निगार किरदार का हर रुख पेश नहीं कर सकता। वो किसी एक जाविये से रोशनी डालकर कोई अहम पहलू नुमाया करता है। तो आइए सामईन मोहतरमा सरताज सबीना से उनका अफसाना सुनते हैं। अफसाने का उन्वान है बदलाव का सफ़र।
4: एक अफसाना पेश कर रही हूँ जिसका उन्वान है बदलाव का सफ़र। सुबह सुबह जैसे ही खाला जान ने घर में कदम रखा, सब ने खुशी खुशी खाला जान का इस्तकबाल किया। खाला को देखकर बच्चियां तो खुशी से झूमने लगीं, मानो सहबा और शहजा की तो जैसे ईद हो गई। सब ने खाला जान को सलाम किया, फिर खाला ने सबको गले लगाया। अम्मी ने फौरन नाश्ता बनाकर खाला जान उनके बेटे रहबर के सामने पेश किया और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हुआ। खाला दूसरे शहर से आई थी, फिर भी कुछ देर सफ़र के बाद वो आराम करने चली गईं। अम्मी ने बच्चों को तैयार किया, वैसे भी आज छुट्टी का दिन था और फिर लंच का अहतमाम करने में मसरूफ़ हो गईं। खाला जान के शौहर भरी जवानी में उनका साथ छोड़कर अपने मालिक के हकीकी से जा मिले थे। खाला इस दुनिया में तन्हा सी हो गई थी, जैसे कि उनके दिल का कफल किसी ने खोल दिया। हालांकि उनके बेटे उनका बेहद ख्याल रखते थे, फिर भी वो खालू जान को कभी ना भूल पाई। हल्की हल्की सर्दी, गुलाबी सर्दी की आहट शुरू हो चुकी थी। मौसम करवट बदल रहा था, सर्दियों की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ऐसे में खाला जान घर आकर अम्मी के कामों में हाथ बटाना, उनकी जिम्मेदारी उठाना एक बड़ी बहन का फरीजा अदा करती थी। वैसे भी अम्मी और खाला जान की उम्र में काफी फर्क था। खाला जान के बड़े साहबजादे अशर उनकी तन्हाई के एहसास से बखूबी वाकिफ थे। अगर कभी खाला जान को वो उदास देखते तो अक्सर उन्हें अम्मी के पास भेज देते। अम्मी के पास आकर वो बहुत खुश होती और उमूमन सर्दियां आने से पहले एक बार वो हमारे घर जरूर आती और अम्मी के कामों में मदद करती। लिहाफ कंबलों को, गर्म कपड़ों को धूप लगाना, ठंडों के लिए लड्डू गोंद की पिंडियां बनवाना, नाश्ते का इंतजाम, अक्सर साग और मक्का की रोटी बनाना, बच्चों की स्कूल के कपड़ों पर नजर सानी करना, खाला जान की कमाल की नज़र थी। घर गृहस्थी के कामों में मानो जैसे उन्होंने

0: खालाजान बहुत डिसिप्लिन खातून थी और सलीका मंदी जैसी उनकी फितरत में बसी थी। खालाजान कई बार सहबा और शहजा को कहानियाँ सुनाती। बीते वक्तों के किस्से कहानियाँ इन्हें तरीके सलीके से रहने के गुण सिखाती, कभी इस बात के लिए उन्हें नसीहत भी करती। सहबा शहजा के दोनों भाई भी स्कूल, कभी ट्यूशन होते और कभी स्टडी रूम में, कभी लड़कों के साथ मैदान में जो उनके घर के सामने फुटबॉल खेलने चले जाते थे। खाला के पास कम वक्त ही होते मगर खाला जान सहबा और शहजा के साथ ही होती। स्कूल से आने के बाद अब तो वो वैसे भी विंटर वेकेशन आ चुकी थी। न जाने क्यों बहुत वक्त तक खाला का घर रहना कभी कभी उन्हें अच्छा न लगता। वजह साफ थी, उन्हें लगता था खाला जान उनकी पुलिसिंग कर रही हैं। कभी वो उन्हें पढ़ाई के लिए नसीहत करती, कभी खाला जान बिना हिचक उनके कमरे में पहुंचकर उन्हें डांट भी लगाती और कहती, ये लड़कियों तुम्हारे स्कूल का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, सोने का वक्त क्या है तुम्हें पता है, मुझे लगता है तुम टीवी में ही वक्त गुजार रही हो। खाला की ये बातें बतौर नसीहत आज भी याद हैं, मगर उस वक्त ये सब ऐसा लगता था कि जैसे खाला जान हमें किसी पुलिस कमांडर की तरह ट्रीट कर रही हैं। हम दोनों बहनों को रस्सा कूदना अच्छा लगता था। कई बार खाला जान छत पर आ धमकती, ए लड़कियों रस्सा ही कूदती रहोगी, बड़े भाई ने हमें स्पेशल रस्से लाके दिए थे ताकि हमारी हाइट भी बेहतर हो सके। और हमें खाला जान अक्सर अम्मी के हाथ बटाने के लिए भी कहती और इस अंदाज में कहती कि तुम्हें पता है तुम बच्चों का मेरी बहन पर कितना बोझ है, सुबह से काम करते करते मेरी बहन खुर्शीदा को रात हो जाती है, चलो जी खाला जान जी कराते हैं काम। वो आहिस्ता आहिस्ता खाला के पीछे हो लेती। अगली सुबह फिर खाला जान की जैसा ये आहट सुनाई देती, शहबा और सहजा झट से बिस्तर छोड़ देती। अरे लड़कियों अभी तक सो रही हो, तुम्हें पता नहीं नमाज का वक्त निकला जा रहा है, ये बातें पसंद नहीं मुझे तुम्हारी लड़कियों की खुर्शीदा। अम्मी जवाब देती, अरे छोड़ो भी आपा, वक्त आने पर खुद समझ जाएंगी, अभी बच्चे हैं। अरे अब नहीं समझेंगी तो कब समझेंगी, खाला फिर कहती। अरे लड़कियों पौधे मुरझा रहे हैं, इन्हें पानी दे दो। खाला जान जी देते हैं। शहजा ने अपनी बहन सहबा के कान में कुछ कहा, खाला को शक हो गया। अरे लगता है कल तुम स्कूल जाने से बच रही हो, अब तुम्हारी सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, कल तुम्हें स्कूल जाना है, क्या बात, क्या तुम्हारे स्कूल का काम पूरा नहीं, चलो बैग उठा कर लाओ, मेरे सामने बैठकर काम पूरा करो। सहबा और शहजा ने बैग उठाया और स्कूल का काम पूरा करने बैठ गयी। ठंडों की दोपहर भर खाला इनके साथ बैठी रही, इन्हें अपने हाथ से बना हुआ साग और चने की रोटी और गुड़ के बने हुए लड्डू खिलाए। फिर शाम हुई, बच्चियां खेलने लगी, मगर खाला ने समझाया, बेटा बैग जगह पर रखो, अपना कमरा साफ करो। और उनकी अम्मी को भी बोला, देखो खुर्शीदा इन्हें सलीका सिखाओ, अपनी जगह करीने से रखें, अपने सामान को और कमरा साफ रखें ये लड़कियां। शहजा और सहबा को मन ही मन में शिकायत भी होती। इन्होंने आपस में सरगोशियों में बात की कि खाला इनके भाइयों को कम और इन्हें कुछ ज्यादा ही दर्श देती हैं। दो महीने खाला जान के प्यार और डांट के बीच कहाँ गुजर गए पता ही न चला। एक रोज सुबह ही सुबह उनके बेटे खाला जान को वापस लेने के लिए आ गए तो घर की फिजा में खामोशी छा गई। दोपहर होते होते खाला ने अपना सारा सामान पैक किया और अपनी मंजिल की तरफ अशर भाई के साथ रवाना हो गई। खाला जान के आने पर खुशी, जाने पर दुख और उनकी डांट पर परेशानी होने का सबब आज तक समझ नहीं आया। जैसे ही आज मैंने अपनी बेटी को उसकी खाला के साथ बातें शेयर करते हुए सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बिटिया, मुझे बीता हुआ वक्त, मेरा माजी एक तस्वीर सा बनकर उभर गया। मैं खाना बनाने और लगाने में अपनी मेड सर्वेंट के साथ मसरूफ थी। मेरी बेटी और मेरी बहन दोनों खाला भांजियां ऑनलाइन किसी सामान का ऑर्डर कर रही थी और इन दोनों ने अपने स्मार्टफोन हाथ में पकड़े हुए थे। वो दोनों किसी ब्रांड के गर्म कपड़ों के बारे में बात कर रही थी। मेरी बहन मेरे घर में अक्सर थकी हारी सी आती हैं, मानो उन्हें कुछ मुस्कुराते आरामदेह लम्हे मेरे यहाँ गुजारने की चाह रहती है। मेरी बेटी इनके साथ बहुत फ्रेंडली है। जैसे ही शबाना आपा ने कुछ ऑनलाइन कपड़ों का ऑर्डर दिया, मैं कुछ देर के लिए सोच में मुब्तला हो गई। न जाने क्यों मुझे अपनी खाला जान का वो किफायत शार नजरिया बहुत याद आया जो मुझे आज भी पसंद है। हालांकि कभी जल्दी में ये वक्त की किल्लत के चलते मैं और मेरी बिटिया भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, मगर मुझे अम्मी की वो बातें हमेशा याद रहीं जो वो मिसाल देती थी, बेटा जल्दी का काम शैतान का। पहले से ही अगर हम किसी काम को अमली जामा पहनाने के लिए सोचते हैं तो वो काम ज्यादा बेहतर होता है। मेरी फैमिली के माली हालात अच्छे थे, मगर फिर भी खाला हमेशा अम्मी को बचत के बेहतर उसूल समझाती। अम्मी अगर वजित होती कि ये चीजें बनी बनाई मार्केट से ले लेंगे, मगर हम लोगों के गर्म कपड़े, जूतियां, कैप, यहाँ तक के रात के पहनने वाले कपड़े तो खाला जान हमेशा अम्मी को समझाती, देखो बहन मैं हूँ, तुम मटेरियल मंगा दो भाई से, मैं बना दूंगी। खाला मेरे अब्बू को भाई कहकर बुलाती थी। वो रिश्ते में अब्बू से बड़े थी मगर बहुत एहतराम से पेश आती थी। वो घर गृहस्थी के काम में ही नहीं इखलाक व एहतराम में भी बहुत स्मार्ट थी। लफ्जों में बयान मुमकिन नहीं जब आज मेरी बेटी मानिया और अपने खाला के पहलू में बैठी उनके साथ लैपटॉप पर सीरियल देख रही थी, मैं टेबल पर डिनर की तैयारी में थी तो मुझे वही जमाना शिद्दत से याद आया जब कभी मेरी खाला अम्मी के कामों में हाथ बटाती और मौसमों की आहट का एक हिस्सा बनकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाती। मगर मेरी बेटी की खाला अपने घर से थकी थकाई आकर मेरे घर आराम के दो पल गुजारती हैं, मेरे बच्चों के साथ अच्छी कंपेनियनशिप निभाती हैं, मिलजुल कर ऑनलाइन शॉपिंग के ऑर्डर बुक कराती हैं, कभी पिक्चर्स देखती हैं, बाहर जाकर खाना खाती हैं और फिर अपने अपने ब्लॉग्स पर पिक्चर लगाती हैं। इन दिनों मेरा बजट कुछ बढ़ जाता है मगर फिर भी ये सब बातें माहौल को गहमा गहमी फराहम करती हैं और खूबसूरत और यादगार लम्हों को जन्म देती हैं। मेरी खाला जो एक माहिर खाना जरदारा थी और बहुत सलीके से घर को करीना बख्शती थी, मैं सोचती हूँ मैं दो जनरेशन के बीच का एक अहम सुतून हूँ। शायद यही वजह है कि हमारी जनरेशन को सैंडविच जनरेशन कहा जाता है, या यूँ कहें कि हम दो किश्तियों के सवार हैं। पहले लोगों की हिकायतों को भी निभाते हैं और आजकल के माहौल को भी अपनाने का हुनर रखते हैं। जैसे ही दरवाजे पर ऑनलाइन कपड़ों के ऑर्डर आए, यकीनन मुझे खाला की वो गरारे जो उन्होंने पत्ती और गोटे से बनाए थे, ईद की सुबह मेरे खाला जाद भाई रहबर देने पहुंच गए और फिर इन्होंने हमारे साथ ही ईद की खुशियां दुबाला की और हम बहने इन कपड़ों को पहनकर फूले नहीं समाए। वैसे भी वो मेरे छोटे भाई की हम उम्र और अच्छे दोस्त थे। रिश्तों की चाशनी को अक्सर माहौल में घोला जाए तो माहौल में खुद ब खुद खूबसूरती आ जाती है। बस यही फन मैंने अपनी खाला से सीखा और घरदारी के खास टिप्स जिससे आज भी खुद एतमादी आती है, वो खाला की खास तरबियत और अम्मी की अच्छी सूझबूझ का नतीजा है। बच्चे तो मिट्टी के कच्चे बर्तन की तरह होते हैं, बड़ों की तरबियत ही उन्हें खूबसूरत शक्ल देती है। आज मेरी बेटी मानिया ने अपनी खाला से खाने की फरमाइश की तो आप ही ने उसके लिए वेज कटलेट यूट्यूब देखकर बनाए, तो ऐसे वक्त पर मुझे अम्मी और खाला की बनाई आलू पूरी और छोले बहुत याद आए। आज के दौर में फैमिली का साइज भी एक प्लानिंग का हिस्सा बन गया है। मेरी बेटी, इसका भाई, इसके कजिन्स, बहनें, वो सब बच्चे अपने अपने कैरियर्स में मसरूफ हैं और अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत फिक्रमंद भी हैं। कोई दूर देश में है तो कोई परदेश में सेटल है, मगर इस बात पर मेरी हैरानी कुछ बढ़ जाती है। पढ़ाई हम लोग भी करते थे और ये लोग भी करते हैं, मगर हमारी जनरेशन कम खर्च, बाला नशी अंदाज में, कम फिक्र फिक्रात में अपने कैरियर की तरफ गामजन रही। आजकल बच्चों पर कुछ अलग फिक्र हैं और वालदैन पर भी। ये सब बच्चे फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैसेज भेजते हैं, मगर शायद ये जिंदगी में घुलना मिलना, वो शरारतें, वो यादें, इनकी जिंदगी में शायद वो शीरी लम्हे न घोल सकें जो फिक्र अंदाज में हमारी सैंडविच जनरेशन के हिस्से में आई और जो चीज़ें हमने अपनी खाला, फूफी और कजिन्स के साथ रहकर महसूस की। ऐसे मसरूफ कुन हालात में पढ़ाई का बोझ, माँ बाप का वर्किंग होना, बच्चों का हॉस्टल में चले जाना, कैरियर की मुश्किलात, कंपटीशन, महंगाई के मार ने इन रिश्तों की चाशनी को शायद कहीं ख़त्म कर दिया है। फिक्र इस चीज़ की लाहक है कि आगे आने वाले दौर में हमारी कई पीढ़ी इस लिज्जत और चाशनी से कतई महरूम हो जाएगी। वक्त रहते हमें इस बारे में कुछ सोचो फिक्र करनी होगी।
1: सामिन, अभी आप मोहतरमा सरताज सबीना से उनका यह अफसाना सुन रहे थे। अफसाने का उन्वान था बदलाव का सफ़र। आइए सामिन, अब बेगम अख्तर की आवाज़ में यह गज़ल सुनते हैं। कलाम है मोमिन खां मोमिन का।

0: सामिन, अभी आप बेगम अख्तर की आवाज़ में यह गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मोमिन खां मोमिन का। सामिन, समाज की बदलती हुई कदरों, ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फ़िक्र और ज़ाती और इनफरादी एहसास को मुतासिर कुन अंदाज में पेश करना अच्छी शायरी का मकसद है। शायरी गहरे मुशाहदे और दिली जज्बात की आईनादार होती है। तो आइए सामईन, प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब सलीम शिराजी से उनका कलाम सुनते हैं।
1: अंधेरी डगर है मियाँ, जहाँ हम फकीरों का घर है मियाँ, जहाँ हम फकीरों का घर है मियाँ। तो है फुर्सत तो कुछ देर मिल बैठिए, है फुर्सत तो कुछ देर मिल बैठिए। जुदाई से किसको मफर है मियाँ, जुदाई से किसको मफर है मियाँ। फुर्सत तो कुछ देर मिल बैठिए, जुदाई से किसको मफर है मियाँ। और कभी वो चिकन थे पर अब खुद चिकन, कभी वो चिकन थे पर अब खुद चिकन। ये इल्ज़ाम भी अपने सर है मियाँ, ये इल्ज़ाम भी अपने सर है मियाँ। जो मांगे है दिल का लहू मुद्दतों, जो मांगे है दिल का लहू मुद्दतों। ये शीशा गरी वो हुनर है मियाँ, तो फिर कठकुलाही पर इसरार क्यों, तो फिर कठकुलाही पर इसरार क्यों। अगर संगवारी का डर है मियाँ, अगर संगवारी का डर है मियाँ, बड़ी ही अंधेरी डगर है मियाँ। और जो एक शेर इसी शेर की कबीर के और नाजा फरमा ले, कहता हूँ कि ऐ पंछियों तुम ही कोई सूरत निकालना, ऐ पंछियों तुम ही कोई सूरत निकालना। सयाद भूल जाए अगर जाल डालना, सयाद भूल जाए अगर जाल डालना। और अब हाथ की लकीरें भी सच बोलती नहीं, अब हाथ की लकीरें भी सच बोलती नहीं। इस बार देखभाल के सिक्का उछालना, इस बार देखभाल के सिक्का उछालना। और मुट्ठी से रेत की तरह लम्हे फिसल न जाए, मुट्ठी से रेत की तरह लम्हे फिसल न जाए। साहेब हवाएं तेज हैं पगड़ी संभालना, साहेब हवाएं तेज हैं पगड़ी संभालना। और इसी कबील के तीन शेर में और चाहता हूँ मुलाहिज़ा फरमाएं। कहता हूँ कि सर से गिर जाए ना दस्तार जनाब, सर से गिर जाए ना दस्तार जनाब। तेज आंधी है खबरदार जनाब, तेज आंधी है खबरदार जनाब। फेंक कर आए तो तलवार जनाब, फेंक कर आए तो तलवार जनाब। फूल ही फूल है इस पार जनाब, फूल ही फूल है इस पार जनाब। और सबसे छिप छिप के अना बेचते हैं, सबसे छिप छिप के अना बेचते हैं। हम भी कुछ कम नहीं खुददार जनाब, हम भी कुछ कम नहीं खुददार जनाब। शेर तरन्नुम से अर्ज कर दूँ, कहता हूँ कि

तुम तो अब कमाल हो गए। लैला फरमाए, दिन ढला तो हमसे बेहुनर, दिन ढला तो हमसे बेहुनर साहिबे।

आईनों में बाल हो गए, तुम तो अब कमाल हो गए, अंग अंग लाल हो गए। जामे दम तो बन सके न हम, जामे दम तो बन सके न हम, सागरे सिफाल हो गए, सागरे सिफाल हो गए। सरबलंद अब भी है वो घर, दलदले निढाल हो गए, दलदले निढाल हो गए, अंग अंग लाल हो गए, तुम तो अब

तरुटाते ही जो हर हाथ में पत्थर देखे।

दर्पतों के सिवा कुछ भी न हाथ आया हमें।

उगा कर देखे हमने आंगन में कई पेड़ उगा कर देखे। तो यीशु सुशांत सुना है,

अब की फसल को तेजाब पिला कर देखे, कोई उस शख्स की। दो तीन शेर और रस कर दूं समय।

0: लड़ा फरमाए, काश उनके जज्बों की शिद्दतें हमें मिल जाए, काश उनके जज्बों की शिद्दतें हमें मिल जाए। हमने जिनसे सीखा था कश्तियां जला देना, हमने जिनसे सीखा था कश्तियां जला देना, कश्तियां जला देना।
1: सामीन, अभी आप प्रोग्राम नवाई शायर के तहत जनाब सलीम

0: 接下来将播放另一首歌曲，请大家收听一下。
1: ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है।

0: खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नवीन कुमार शर्मा का नमस्कार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेणु गुप्ता।
1: जी मैं हूँ रेणु गुप्ता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खेल के रोमांचक जगत से जुड़ी खास खबरों के लिए।
0: बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही शानदार है। जैसे कल शानदार प्रदर्शन किया था महिला क्रिकेट टीम ने, गोल्ड पदक दिलाया था और उसके बाद आज भी पदकों की झड़ी लगी रही है। भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, 4 पदक उसकी झोली में आ चुके हैं, जिनमें मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में दिलाया है रजत पदक। इसके अलावा सॉफ्ट टेनिस में पहली बार एशियाई खेलों में पदक मिला है। इसके अलावा स्किट निशानेबाजी में पदकों की लगातार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं और स्किट में दोनों वर्गों में टीम स्पर्धाओं में हमें पदक मिले हैं। इसके अलावा भी वुशु में अच्छा प्रदर्शन हुआ है, रशोबीना ने फाइनल में जगह बनाई है। इसके अलावा बैडमिंटन में भी पदक तय हो गया है। बहरहाल बहुत अच्छा एक प्रदर्शन आईची नगोया, जो जहां पर एशियाई खेल चल रहे हैं वहां पर भारतीय खिलाड़ी लगातार कर रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। भारतीय खिलाड़ी नया इतिहास रचने के लिए एक दृढ़ संकल्पित हैं और कहते हैं संकल्प से सिद्धि है और वो आईची नगोया में साफ दिखाई दे रहा है। रेणु, क्यों ना सबसे पहले बात आईची नगोया में चल रहे एशियन गेम्स की ही करें।
1: जी हाँ बिल्कुल।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की चमक देखने को मिली। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर एशियाई खेलों में पहली बार पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी की स्किट मुकाबलों में 2 पदकों ने तिरंगे की चमक बढ़ाई तो सॉफ्ट टेनिस में जैमीना ने ऐतिहासिक पदक दिलाकर नया अध्याय जोड़ दिया। 4 पदक, 4 शानदार उपलब्धियां और हर तरफ भारतीय खिलाड़ियों के हौसले की चमक दिखाई दी। एशियाड में आज का दिन भारत के लिए पदकों और उपलब्धियों की सुनहरी कहानी का दिन रहा। इसके अलावा भी भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है और उन्होंने और मेडल जीतने तय कर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारोत्तोलन की, तो भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों में पदक के 28 साल के इंतजार को खत्म किया। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 49 भार वर्ग के स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम भार के साथ कुल 198 किलोग्राम वजन उठाया। यह भारत का 1998 में कर्णम मल्लेश्वरी के कांस्य पदक के बाद एशियाई खेलों में भारोत्तोलन में पहला पदक है। मीराबाई ने ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते हैं, लेकिन एशियाई खेलों में 2014 से उन्हें अपने पहले पदक की तलाश थी जो आईची नगोया में पूरी हो गई। उत्तर कोरिया की 2 बार की विश्व चैंपियन री सॉन्ग गम ने स्नैच में 94 और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम वजन उठाकर 215 वजन के साथ कुल वजन में विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह उनका एशियाई खेलों में लगातार 3रा स्वर्ण पदक है। इंडोनेशिया के लुलुक डायना त्री विजियाना ने स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 103 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। ओलंपिक में मीराबाई ने रजत, विश्व चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण सहित 3 पदक तथा राष्ट्रमंडल खेल और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। यह मीराबाई का 3रा एशियाड था। 2014 में वह 9वें स्थान पर रही थी जबकि 2018 के एशियाई खेलों में चोट के कारण हिस्सा नहीं ले पाई। पिछले एशियाई खेलों में वह 4वें स्थान पर रही थी लेकिन इस बार रजत पदक जीतकर उन्होंने सारी कसक दूर कर दी। निशानेबाजी में भारतीय पुरुष और महिला की टीमों ने कांस्य पदक जीते लेकिन व्यक्तिगत वर्ग में झोली खाली रही, जिसमें फाइनल में 3 में से 2 भारतीय शूटर 4थे स्थान पर रहे। 3 दिन के क्वालिफिकेशन दौर के बाद भारत की राजा ढिल्लो, मल्लेश्वरी चौहान और परिणाज धालीवाल की महिला स्केट टीम ने 331 के संयुक्त स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। यह एशियाई खेलों में महिला स्केट स्पर्धा का भारत का पहला पदक है। चीन को स्वर्ण और कजाकिस्तान को रजत पदक मिला। चीनी टीम ने 357 और कजाकिस्तान ने 336 का स्कोर किया। रायजा और परिणाज ने व्यक्तिगत फाइनल में भी जगह बनाई लेकिन रायजा 4थे और परिणाज 8वें स्थान पर रही। क्वालिफाइंग दौर में रायजा 8वें और परिणाज 9वें स्थान पर रही थी। पुरुष वर्ग में अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भावतेज सिंह गिल ने 346 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। अनंतजीत सिंह ने 119, मेराज ने 116 और बहुतेग ने 111 का स्कोर किया। एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता और पिछली बार के रजत पदक विजेता अनंतजीत सिंह व्यक्तिगत फाइनल में भी पहुंचे लेकिन पदक से 1 अंक से चूक गए। उन्होंने फाइनल में 25 का स्कोर किया लेकिन पहली सीरीज में 2 निशाने चूकने का खामियाजा भुगतना पड़ा। स्किट स्पर्धा में हर शूटर को 125 अंकों में से अधिकतम अंक हासिल करने होते हैं। सॉफ्ट टेनिस में भारत की जैमीना ने देश को कांस्य पदक के रूप में ऐतिहासिक पदक दिलाया। पहली बार एशियाई खेलों में भारत ने सॉफ्ट टेनिस में पदक जीता है। 26 साल की जैमीना का यह 3रा एशियाड है और इस बार उन्होंने पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सेमीफाइनल में हालांकि उन्हें जापान के ताकुया कुरोसोका के खिलाफ 4-2 यानी 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4 से हार मिली लेकिन सेमीफाइनल प्रवेश से उन्होंने पदक पक्का कर लिया था। जब क्वार्टर फाइनल

0: में उन्होंने फिलीपींस के शेरविन न्यू गुइट को 04-42-24-42-53-25-75 से कड़े मुकाबले में पराजित किया था। निर्णायक गेम में जय एक समय 3-5 से पिछड़ रहे थे, लेकिन फिर लगातार 4 अंक जीतकर मैच का रुख मोड़ दिया। जय ने इससे पहले पाकिस्तान के हुसैन अरेन को 4-0 से मात दी थी। जय के नाम विश्व चैंपियनशिप का भी मेडल है और अब एशियाड का भी मेडल हो गया है। विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने आद्या तिवारी के साथ मिश्र वर्ग में कांस्य पदक जीता था। बात महिला हॉकी की करें तो ड्रैग फ्लिकर दीपिका के रिकॉर्ड 9 गोल की मदद से भारत ने अपना अजय अभियान जारी रखते हुए पूल बी में थाईलैंड को 20-1 से रन दिया। भारत के लिए दीपिका ने 9 गोल दागे। अनुभवी फॉरवर्ड नवनीत कौर ने 4 और ऋतुजा पिसाल ने 3 गोल किए। वहीं मिडफील्डर नेहा लालरेमसियामी, साक्षी राणा और कप्तान सलीमा टेटे ने भी गोल किए। दीपिका की स्टिक से तो गोलों की बारिश हो रही है। उज्बेकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 8 गोल किए थे। भारत ने पहले क्वार्टर में 6, दूसरे और तीसरे क्वार्टर में 5-5 और अंतिम क्वार्टर में 4 गोल किए। थाईलैंड का एकमात्र गोल 57वें मिनट में सुपानसा सामोसो ने किया। अब भारत का सामना शुक्रवार को जापान से होगा। भारत ने इससे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 और इंडोनेशिया को 17-1 से हराया था। पूल बी में 3 मैच जीतकर भारत शीर्ष पर है। हर पूल से 2 शीर्ष टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। मुक्केबाजी में अमित पंघाल पुरुषों के 80 किलो के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे अमित ने बहरीन के हमसा वेगोल को अंतिम 16 में 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से हराया। अब उनकी टक्कर क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान के नेहरू सालुमोस से होगी और एक और जीत भारत का मेडल तय कर देगी। तैराकी में रोहित बैनिंगटन पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश करने से नाकाम रहे। रोहित ने हीट में 53.08 सेकंड का समय निकाला, लेकिन अपनी हीट में 4थे और कुल 13वें स्थान पर रहे। तलवारबाजी में भारत की गुशो निधि कुमारेशन पद्मा पुरुषों की साबरे स्पर्धा के प्री क्वार्टर में कजाकिस्तान के आर्टेम सरकिसियान से 11-15 से हार गए। भारतीय खिलाड़ी ने राउंड ऑफ 32 में लाओस के क्वेंटिन को 15-8 से हराया था। अन्य भारतीय खिलाड़ी करण सिंह को चीन के लुओ शाओलोंग ने 15-14 से हराया। महिलाओं की व्यक्तिगत फाइल स्पर्धा में मीना देवी नौरम और आशिता राउंड ऑफ 32 में हारकर बाहर हो गई। भारत की ये दोनों खिलाड़ी पूल चरण के 5 मुकाबलों में केवल 1 जीत के बावजूद राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने में सफल रही थी।
1: और अब खास खबर बैडमिंटन कोर्ट से। भारत ने एशियन गेम्स में अपना 12वां मेडल बैडमिंटन के मेंस टीम इवेंट में कांस्य पदक के रूप में जीता। रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम को चीन के खिलाफ 3-1 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते टीम का सफर ब्रोंज मेडल पर समाप्त हुआ। पहला मैच सिंगल्स ओलंपियन लक्ष्य सेन को चीन के पूर्व विश्व चैंपियन शी युकी से 16-21-18-21 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे चीन 1-0 से आगे हो गया। दूसरा मैच जो डबल्स था, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी ने शानदार वापसी की। उन्होंने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जोड़ी लियांग वेई किंग और वांग चांग को सीधे गेम में 21-11 और 22-20 से हराकर भारत को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। तीसरा मैच सिंगल्स युवा सनसनी आयुष सेट्टी का मुकाबला दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी ली शी फेंग से था। आयुष ने अच्छी टक्कर दी, लेकिन वे 19-21-13-21 से ये मैच हार गए। चीन फिर से 2-1 से आगे हो गया। चौथा मैच डबल्स, यह भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला था। हरिहरन अम्सकारुनन और एम आर अर्जुन की जोड़ी का सामना हेजी टिंग और ली यू से हुआ। भारतीय जोड़ी ये मैच 21-16, 17-21, 21-19 से हार गई और इसी के साथ चीन ने 3-1 से फाइनल में प्रवेश किया। महिला टीम की बात करें तो महिला बैडमिंटन टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में जापान से 1-3 से हारने के बाद समाप्त हो गया था। और अब खबरें वुशु और स्क्वैश से। तो एशियाई खेलों में वुशु और स्क्वैश कोर्ट से भारत के लिए शानदार खबरें आ रही हैं। वुशु में स्टार खिलाड़ी नाओरेम रोशिबिना देवी ने फाइनल में जगह बनाकर भारत का एक और पदक पक्का कर लिया है। महिला के सांडा 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में रोशिबिना ने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंग त्यास को 2-0 से हराया और अब वे स्वर्ण पदक के लिए चीन की झांग शिया ओयू के सामने होंगी। इस उपलब्धि के साथ रोशिबिना एशियाई खेलों के लगातार 3 संस्करणों में पदक जीतने वाली भारत की पहली और अब तक की एकमात्र वुशु खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में कांस्य और 2023 हांगझोऊ में रजत पदक जीता था। अब 24 सितंबर को उनकी नजर रजत का रंग बदलकर स्वर्ण करने पर होगी। हालांकि पुरुषों के 56 किलोग्राम सांडा वर्ग में आर्यन ठाकुर को क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के सैदुल्लो आबिरा शितोव से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। उधर स्क्वैश कोर्ट पर भी भारतीय अभियान की शानदार शुरुआत हुई है। पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में अभय सिंह ने थाईलैंड के अरकारा डेट अरकारा हिरुनिया को 11-1, 11-0 और 11-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके बाद वीर चोटरानी ने श्रीलंका के शमील वकील को 11 8-11-3 और 11-3 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। महिला एकल में भारत की युवा स्टार अनाहत सिंह को तीसरी वरीयता मिली है और उन्हें पहले दौर में बाई मिली है। वे 24 सितंबर से अपना अभियान शुरू करेंगी। इस बार स्क्वैश का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में स्क्वैश पहली बार शामिल होगा और एशियाई खेलों के पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए ओलंपिक कोटा स्थान उपलब्ध है।
0: ये था एशियाई खेलों में भारतीय जो टीम का प्रदर्शन है आज का। इस पर अभी अपडेट भी देंगे और खास बातचीत भी सुनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पदक विजेताओं से भी आपको बातचीत सुनवाई जाए, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और कितनी खुशी है। बहरहाल फिलहाल हमने बात की है कन्नम मल्लेश्वरी जो कि भारत की दिग्गज वेट लिफ्टर रही हैं, और मीराबाई चानू ने जो आज रजत पदक जीता है वो 1998 में कन्नम मल्लेश्वरी के बाद एशियाई खेलों में वेट लिफ्टिंग में किसी महिला भारोत्तोलन का पहला भारोत्तोलक का पहला पदक है। तो क्या कहा कन्नम मल्लेश्वरी ने मीराबाई चानू की परफॉर्मेंस पर, आइए जानते
2: हैं। बहुत खुशी की बात है, मैं उसकी कंपटीशन लाइव देख रही थी और मैं अपना पुराना टाइम भी याद कर रही थी और ये बहुत शानदार, बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत खुशी है कि भी वेटलिफ्टिंग में खाता खुल गया और आने वाले टाइम में और मेडल आएंगे।
3: तो मैम आपको लग रहा है कि जब जो कॉमनवेल्थ में उन्होंने मेडल जीता लगातार गोल्डन उनकी रही थी, अब यहाँ उनको एशियाई खेलों के लिए उन्होंने बहुत तैयारियां की थी और ये कहीं ना कहीं उनकी जो अल्मीरा में ये मेडल नहीं था, अब उन्होंने ये भी हासिल कर लिया, तो ये एक अच्छा, एक सभी भारतीय वेटलिफ्टिंग के लिए एक अच्छी खबर है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरा वेटलिफ्टिंग जो फैमिली है उनके सबके लिए बहुत बड़ी कवर है और बहुत खुशी की बात है और आने वाली जो बच्चियां हैं उनको भी काफी मोटिवेशन मिलेगा इस मेडल से, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी है और मैं मीराबाई चानू को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी।
3: तो बिल्कुल 1998 में आपने जीता था और जब आप ये स्थिति देती हैं तो कहीं ना कहीं आप जैसे लीजेंड जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी भी एक याद आती होगी उस समय जो आपने परफॉर्मेंस किया था। और वो
2: जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, मैं 1995 वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने जब खेलने गई थी तो मैं, मेरा भी कैटेगरी 52 कैटेगरी में मैंने किया था, कैटेगरी चेंज होते रहते हैं। उस टाइम में मैंने 90 kg स्नैच और 130.5 क्लीन एंड जर्क करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था 95 में।
3: जी जी जी,
2: तो आज मेरा भाई आसपास आ गई है जी, तो बहुत ज्यादा खुशी है।
3: तो एशियन गेम्स में भी आपने जीता था, उसके बाद ये दूसरा मेडल है महिला वेटलिफ्टर का।
2: एशियन गेम्स में मेरा दो मेडल है, मैं हिरोशिमा एशियन गेम्स में भी मेरा सिल्वर था और बैंकॉक एशियन गेम्स में भी मेरा सिल्वर था।
3: तो आपको लगता है मैम यहाँ एशियाई स्तर पर ही इतनी बड़ी अच्छी एक चुनौती होती है और यहाँ मेडल जीतना, पोडियम फिनिश करना अपने आप में?
2: बिल्कुल बिल्कुल, जो वेटलिफ्टिंग में स्पेशली अब तो यूरोपियन कंट्रीज में आ गए, पहले हमारे टाइम में तो एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता था, अभी भी है, जैसे चाइना हो गया, जापान और कोरिया, इंडोनेशिया, इनकी लड़कियां काफी स्ट्रांग होती है, उनके साथ हमारी काफी टफ कंपटीशन होती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है।
3: जी, जो युवा वेटलिफ्टर जो सुन रहे हैं आपकी बात और जिन्होंने प्रदर्शन देखा है मीराबाई चानू का या जो आपका देखते रहे हैं, पीछे आप एक पोस्टर गल रही है वेटलिफ्टिंग की, भारतीय वेटलिफ्टिंग की, तो अभी क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए?
2: हाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि भी जो भी बच्चियां आ रही हैं वेटलिफ्टिंग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा ब्राइट है अब, और खेलो इंडिया का कई सेंटर्स बन गई हैं अभी, हमारे टाइम में तो जीरो फैसिलिटीज थे, अब गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत सपोर्ट कर रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बहुत सपोर्ट कर रही है, अब चीजें बहुत ईजी भी हो रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज ले लीजिए, सप्लीमेंट्स ले लीजिए, डाइट ले लीजिए और मैनेज करने का भी बहुत मतलब हमारा टाइम में जो जुड़े हैं अभी 100 times
3: बेटर हो गया,
2: अच्छी सुविधा बेटर हो गई है, तो अब तो मैं चाहूंगी कि भी और भी जो वेटलिफ्टर्स है वो आगे आए, अपने अपनी मेहनत करें और देश के लिए मेडल जीते।
0: बिल्कुल, देश के लिए मेडल जीते। एशियाई खेलों पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे और जैसे हमने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पदक विजेता से जरूर आपकी बातचीत सुनाई जाए, लेकिन बहरहाल इससे इस दौरान हम बात कर लेते हैं सुब्रतो कप की, जो कि स्कूली फुटबॉल
4: इनी ईदैक स्वहिलिया आकाशवाणी हम जम्बो वस्कली वेटू अफ्रीका मशवी के नमाहली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदाई नसिकी का टूना टंगाजीनी क्वेनिक्लो हार्ट्स एल्फू

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट

तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Nusikiliza zi mema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho,
1: 90% juwaon ke pas अब इंटरनेट का कनेक्शन है, जो यह दर्शाता है कि यह पीढ़ी तेजी से इंटरनेट से जुड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में ईमेल और इंटरनेट बैंकिंग की भी लोकप्रियता बढ़ी है। डिजिटल कौशल को लगातार अपनाने से ग्रामीण भारत और अधिक सशक्त हो रहा है तथा प्रौद्योगिकी के नए नए अवसर विकसित होने की संभावनाएं बढ़ी है। सरकार ने भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का निर्माण किया है। डिजिटल इंडिया पहल ने प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप और नवाचार योजनाओं को लागू किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, जेन नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप डोमेन, स्पेसिफिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नेक्स्ट जनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम जैसी योजनाएं शामिल है।

इसके अलावा भारत नेट परियोजना भी महत्वपूर्ण है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को ऑप्टिकल फाइबर लाइनों से जोड़ती है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड योजना दूर दराज के समुदायों को 4G सेवा प्रदान करती है। इसे इंटरनेट उपलब्धता बढ़ाने के लिए ही अपनाया गया है। भारत बीपीओ प्रमोशन स्कीम और नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम कम सेवा वाले क्षेत्रों में आईटी और आईटीईएस विकास को प्रोत्साहित करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी की भी संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पीएम वाणी कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करना है। इन सभी परियोजनाओं ने मिलकर डिजिटल संभावनाओं को बढ़ाया है तथा भारत की डिजिटल क्रांति को जमीन पर उतारने में अपेक्षित मदद की है। आज आए दिन अनेक ऐसे जुआ की कहानी सामने आती है, जो केवल एक मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर व्यापक पहुंच के जरिए हर महीने लाखों की कमाई कर रहे हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के लिए प्रति क्षण नए नए आइडिया पर काम हो रहा है। जीवन के छोटे बड़े हर अवसरों की नवीन प्रस्तुति लोगों को लुभा भी रही है। भारत में वेडिंग इंडस्ट्री में तकनीक और संवेदनाओं के संगम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। अब शादी की रस्मों के साथ साथ भावनाओं और अनकहे पलों को सहेजने के लिए वेडिंग कंटेंट क्रिएटर की मांग बढ़ रही है। यह डिजिटल बदलाव गाँव के लिए एक नए अवसर के रूप में है। गाँव के युवाओं के लिए स्वरोजगार का इससे एक नया और मजबूत जरिया बन रहा है। गांव देहात की शादियों में भी पारंपरिक फोटोग्राफर के साथ साथ वेडिंग कंटेंट क्रिएटर और वेडिंग सोशल मीडिया मैनेजरों की मांग बढ़ रही है। इनका मुख्य काम शादी की रस्मों के साथ साथ माँ की ममता, पिता के मौन और पर्दे के पीछे उन अनकहे जज्बातों को सहेजना है, जो अक्सर बड़े कैमरों की नजर से छूट जाते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब सर्च और अन्य वीडियो प्लेटफॉर्म के तेजी से विस्तार से नई पीढ़ी की सोच को बदल दिया है। आज युवा अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को हफ्तों बाद नहीं, बल्कि उसी रियल टाइम में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर शादी की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। कंटेंट क्रिएटर कैमरे के जरिए सिर्फ चेहरों को नहीं, बल्कि रिश्तों की धड़कन और भावनाओं को भी रिकॉर्ड करते हैं, जो लोगों को पसंद आता है। आलम यह है कि अब गांव में भी एल्बम कब मिलेगा की जगह पहला सवाल यह होने लगा है कि रील कब आएगी। इस डिजिटल बदलाव के कारण छोटे कस्बों, गांव और ग्रामीण अंचल के रचनात्मक युवाओं के लिए स्वरोजगार और कैरियर का एक शानदार नया विकल्प बनकर सामने आया है। भारत का ग्रामीण डिजिटल विकास युवाओं को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए बहुत सशक्त बना रहा है, जिससे कि दैनिक जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं। डिजिटल क्रांति के कारण गांव और शहर के विभाजन कम हो रहे हैं। कम लागत वाले हाई स्पीड इंटरनेट और विभिन्न सरकारी पहलुओं की उपलब्धता के साथ ग्रामीण युवा संचार, स्टार्टअप, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, बागवानी और आर्थिक विकास के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बन रहे हैं। यह प्रवृत्ति विकास और अवसर को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका की बढ़ती समझ को दर्शाती है। जैसे जैसे डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है, ग्रामीण युवा देश की भविष्य की कनेक्टिविटी और समावेशिता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हुए हैं। कुल मिलाकर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन आज युवाओं के लिए तेजी से उभरता हुआ कैरियर बन चुका है। फूड ब्लॉगिंग, ट्रेवल ब्लॉगिंग, म्यूजिक फोटोग्राफी, शिक्षा, खेती, बागवानी और वीडियो प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में युवा अपनी प्रतिभा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पहचान और रोजगार दोनों में बदल रहे हैं। छोटे छोटे गांव और पहाड़ी इलाकों के क्रिएटर भी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हाल के दिनों में अनेक युवाओं के सफलता की कहानी यह बताती है कि आज रचनात्मकता सिर्फ शौक नहीं, बल्कि मजबूत आर्थिक अवसर बन चुकी है। श्रोताओं, ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल क्रिएशन और डिजिटल उद्यमिता के लिए सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान पीएमजी दशा के साथ साथ राज्यों द्वारा भी प्रोजेक्ट गंगा और डिजिटल इंटरप्रेन्योर की योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य सरकारें इंटरनेट विस्तार के लिए ग्रामीण युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनाती है और व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए की ऋण सहायता

0: भी प्रदान करती है। ग्राम पंचायतों में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। नाबार्ड और NSDC जैसी संस्थाएं भी डिजिटल इनोवेशन का कार्यक्रम चला रही हैं। ग्रामीण युवा इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए स्वरोजगार प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं तथा अन्य लोगों को भी वीडियो कंटेंट क्रिएशन के जरिए रोजगार प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं।
1: प्रीति बहन,
2: जी
1: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये वार्ता वार्ता का विषय था ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। वार्ताकार थे अनिल तिवारी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं नई दिल्ली से, और इन्होंने कितना अच्छे से हमारे भाइयों को समझाया कि वो गांव में भी रह के डिजिटल कंटेंट क्रिएशन भी बन सकते हैं और रोजगार भी कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा ही था कि हम अपने साथियों को जानकारी दिलवाएंगे, साथ में मनोरंजन करवाएंगे, तो अभी एक जानकारी हमारे पास और है, वो है सांकेतिक भाषा को लेकर। क्योंकि सांकेतिक भाषा, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि संकेत वाली भाषा,
1: बिल्कुल,
2: और ये भाषा इतनी जरूरी हो जाती है कभी कभी कि जो हमारे भाई बहन नहीं सुन पाते हैं तो वो सिर्फ आपके संकेतों को देखकर ही समझ पाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो इसका जो संबंध है ना, वो सिर्फ संकेतों पर नहीं है बल्कि उसमें उनका व्याकरण छिपा होता है, संरचना और आपकी अभिव्यक्ति भी होती है।
1: बिल्कुल,
2: तो दुनिया को एक अलग तरीके से अपनी भाषा को संकेतों के माध्यम से कह देना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि चाहे समाचार हो या कुछ भी हो, तो वहां पर एक आपका जो सांकेतिक भाषा में बात कहने वाला व्यक्ति भी वहां मौजूद रहता है।
1: बिल्कुल प्रीति बहन, आपने सही कहा। और आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम बढ़ाते हैं और आगे सुनवाते हैं रागनी विकल गुर्जर की आवाज में।

0: तो अभी आपने सुना विकल गुर्जर की आवाज में इस रागिनी को, और इसी रागिनी के साथ हमारा ये कार्यक्रम ग्राम संसार यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60%

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही वे आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों की प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन IOC के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत के संदर्भ में की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का IOC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाओरोम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमांग निंगतियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयंसेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: प्रीति बहन,
1: जी।
0: कार्यक्रम लेके हाजिर हैं और इस कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे और साथ साथ उनको उनका मनोरंजन भी कराएंगे, क्योंकि शाम का समय है और हमारी जो भाई बहन है इस कार्यक्रम को बेसब्री से सुनते हैं और सारे काम उससे फ्री हो जाते हैं और एक चौपाल की तरह इकट्ठे होकर रेडियो सेट को लेके हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
1: जी
0: देखिए प्रीति बहन, सबसे पहले हम अपने भाइयों को बता दें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाई बहनों के लिए और लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं में से सबसे पहली योजना है फसल अवशेष प्रबंधन योजना। देखिए ये केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण

0: पहले, जिसका उद्देश्य खेतों में फसल कटाई के बाद बचे अवशेष विशेषकर धान के पुआल को जलाने की समस्या को कम करना है और उसका उचित प्रबंधन करना है। प्रीति बहन, इसकी योजना के साथ साथ हम अपने भाइयों को ये भी बताते चले कि किसानों को फसल अवशेषों को खेत में ही उपयोगी बनाने के लिए कृषि मशीनरी और तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इनमें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, अन्य अवशेष प्रबंधन उपकरण शामिल हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये बहुत ही हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बन जाती है। और इसके अलावा इसमें एक और खास बात है कि फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण, मिट्टी की उर्वरता में कमी और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और इसके बजाय अगर अवशेषों को मिट्टी में जलाकर जैविक पदार्थ के रूप में उसका उपयोग किया जाए या अन्य उपयोगी कार्यों में भी उसको लगाया जा सकता है, तो इस योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बन जाता है इन सब चीजों को लेकर के। और इसी योजना के तहत किसानों को फसल अवशेषों को खेत में ही उपयोगी बनाने के लिए कृषि मशीनरी और तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि इनमें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, श्रेडर, मल्चर और अन्य अवशेष प्रबंधन उपकरण भी शामिल होते हैं। और इस योजना का उद्देश्य अगर हम मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो केवल पराली जलाने पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि कृषि अवशेषों को संसाधन में बदलना, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना और किसानों को टिकाऊ कृषि की ओर प्रोत्साहित करना भी है।
0: बिल्कुल
1: तो क्यों ना हम अभी अपने साथियों को सुनवा देते हैं एक उपदेश योगेश कुमार और साथियों की आवाज में। तो आइए सुनते हैं ये उपदेश।

0: प्रीति बहन,
1: जी
0: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे, ये उपदेश कलाकार थे योगेश कुमार व साथी।
1: और आइए अब आपको कृषि समाचार दर्शन के तहत सुनवाते हैं मसाला वर्गीय फसलों की खेती पर कुछ अनुभवी किसानों से बातचीत, और ये बातचीत की है संध्या गुप्ता ने।
2: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। आज के अंक में मसाला वर्गीय फसलों की खेती करने वाले किसान अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।

0: गजेंद्र सिंह, गांव गुलखेड़ी, तहसील छिपावड़ों, जिला बारा का रहने वाला हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैं मेथी दाना की खेती अपने खेत में करता हूँ। ये औषधि सब्जी और मसाला तीनों में आती है। मेथी की खेती रबी में होती है। अक्टूबर से और 10 नवंबर की बुआई का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। ये सभी प्रकार की मिट्टी में होती है। मेथी की खेती करने के लिए जमीन को 3-4 बार हकाई करके बिल्कुल मुरमुरा बनाया जाता है। बाद में पलेवा करके और पुनः हकाई किया जाता है। 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज उपचार करके सीड ड्रिल द्वारा बुआई की जाती है। मेथी दाना की खेती में सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें केवल एक बार पानी दिया जाता है 35 से और 55 दिन के अंदर, या कोई कोई फूल नजर आने पर दिया जाता है। अगर जमीन कमजोर है तो उसमें 2 सिंचाई पर्याप्त है। मेथी की फसल में फफूंदी रोग, रस चूसक कीट का प्रकोप होता है। 4 माह में फसल पीली पड़ने पर व फलियां कठोर होने पर कटाई की जाती है। थ्रेशिंग द्वारा फसल तैयार की जाती है। उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। मसाला फसल होने के कारण बाजार भाव ठीक मिलता है। किसानों के लिए कम लागत में अच्छी पैदावार देने वाली यह फसल है। भंडारण के लिए अच्छी तरह सुखा के छायादार स्थान में इसको भंडारण किया जा सकता है। नेचुरल अपने आप में इसमें कड़वास होने के कारण कोई कीट मेथी की फसल में दाने में लग नहीं पाता है। दाना ठोस, चमकदार, वजनदार होना चाहिए। दाने का रंग पीला होना चाहिए। कोई कच्चा दाना उसके अंदर हरे रंग का होना नहीं चाहिए। ये अच्छी क्वालिटी की मेथी में आता है, क्योंकि ये औषधि और मसाला दोनों में काम आती है। मंडी भाव भी इसका लगभग ठीक रहता है और ये किसानों के लिए लाभदायक एक फसल है। मसाला के लिए बारीक दाने वाली फसल है वो अत्यधिक उपयोगी है, जबकि औषधि के लिए अन्य उपयोग के लिए मोटे दाने वाली जो बीज है वो काम में लिया जाता है। गर्मी का प्रभाव इस पे जरूर आता है। गर्मी अगर लेट बुआई की है तो गर्मी में इसमें सफेद रोली और चेपा की समस्या आ जाती है, जिससे इसका उत्पादन प्रभावित होता है। ये फसल कम पानी वाली फसल है, इसलिए और चूंकि इसका भाव भी ठीक रहता है, रोग रोधी भी ये फसल है, इस कारण किसानों का रुझान इसकी तरफ रहता है। ये मुनाफा देने वाली फसल है। किसान का आर्थिक स्वावलंबन इससे बनता है।
1: नमस्कार, मैं रामनिवास नागर। हम आज बात करेंगे अजवाइन के बारे में, और ये लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में हो जाते हैं, लेकिन बलुई और दोमट मृदा अगर हो उसमें इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। इसको पकने के लिए तो ये ठंडक चाहिए, इस वजह से रबी की फसल होती है। और इसकी जो उन्नत किस्में हैं, जो अपने अजमेर मंडल द्वारा अजमेर में जो बीज ग्रह हैं उन्होंने विकसित की हैं, AA1 और AA2 बहुत अच्छी किस्में हैं। बुआई का समय वही अपने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बोना चाहिए, और खेत को तैयार करने के लिए 2-3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं, और 8-10 टन प्रति बीघा के हिसाब से खाद डाल देते हैं। इनको दोनों तरह से बोया जा सकता है, अपन छिटक के इसमें बो सकते हैं और लाइन टू लाइन भी इसमें बो सकते हैं। और सिंचाई में तो ज्यादा है नहीं, 2-3-4 सिंचाई में ये फसल आ जाती है, कम सिंचाई की फसल है। जरूरी ये है कि इसमें पानी नहीं भरना चाहिए खेत में, वरना इसे फंगस लग जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। खाद इसमें बहुत कम लगता है, 20 किलो नाइट्रोजन और फास्फोरस थोड़ा सा इसमें देना पड़ता है, और ज्यादा रोग इसमें आते नहीं है। थोड़ा माहू वगैरह रोग आता है तो डाइमेथोइड से स्प्रे कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। लगभग 120 से 140 दिन के आसपास की फसल है, 4 महीने के आसपास में कटाई हो जाती है। जब खेत से खुशबू आने लग जाती है, बीज थोड़े से भूरे हो जाते हैं, कटाई कर लेते हैं। कटने के बाद फिर 3-4 दिन का धूप लगा के इसको डंडे से निकाल लेते हैं, छिड़क लेते हैं। लगभग 3 से 4 क्विंटल के आसपास इसकी पैदावार होती है। कुल मिला के अगर पर बीघा खर्चा देखा जाए 5 से 7-8 हजार के आसपास का इसमें खर्चा आता है। मार्केट में इसका भाव ठीक आता है, लगभग 15 से 20 हजार, 22 हजार प्रति क्विंटल के आसपास भाव आ जाता है इसका। एवरेज 4 क्विंटल भी अगर निकल जाती है तो लगभग 70-80 हजार के आसपास की पैदा हो जाती है पर बीघा। लगभग 15 बीघा के आसपास हम अजवाइन करते हैं, और 20 से 25 बीघा हम धनिया की खेती करते हैं। बुआई होती है धनिया की इसी के आसपास होती है, 15 अक्टूबर से और 30 नवम्बर ही। और धनिया में 5-6 किलो के आसपास बीज लगता है पर बीघा के हिसाब से, और 5-6 बीघा बीज को थोड़ा सा क्या है मसल के और 2 बागों में तोड़ ले, रात को भिगो के रख दें, और सुबह अगर उसको बुआई करेंगे तो 100% वो उसका जर्मिनेशन हो जाता है। इसके जैसे 3-4 सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन धनिया में एक

0: खास बात यह है कि पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर पानी आपने दिया है तो तुरंत मृदा में अवशोषित हो जाना चाहिए, इतना सा पानी की आवश्यकता होती है। खासकर किसान क्या करते हैं धनिया में कि जो फूल आते हैं तो फूलों के समय सिंचाई नहीं करते हैं, तो फूलों की सिंचाई करना बहुत जरूरी है, तभी उसमें अच्छी सी डोड़ियां बनती हैं और प्रॉपर बीज बनता है, वरना जो बीज होता है वो पतला रह जाता है और उससे उत्पादन घट जाता है। और धनिया में जो रोग हैं वो सफेदा रोग, महुआ रोग, वो सारे अजवाइन जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है। और वही 3.5 4 महीने की फसल होती है, लास्ट फरवरी और मार्च की शुरुआत में धनिया की कटाई हो जाती है। और कुछ लोग धनिया को पत्तियों के लिए भी बोते हैं, तो पत्तियों के लिए तो क्या होता है कि 35 से 45 दिन के आसपास उसकी कटाई शुरू हो जाती है। उसके लिए अलग से थोड़ी किस्म आती है, उन्नत किस्में राजस्थान में है, कृषि विज्ञान केंद्र से मिली जाती है पूरी जानकारी किसानों के लिए। आजकल तो सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे सेंटर खोल रखे हैं, ये सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं। तो अजवाइन और धनिया की खेती लगभग एक जैसी हैं। ये है कि धनिया में थोड़ी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, एक निराई गुड़ाई तो जरूरी है और थोड़ा खाद ज्यादा लगता है। यूरिया और DAP दोनों को मिक्स करके अपन दे सकते हैं, उसमें पोटाश वगैरह की, फॉस्फोरस की आवश्यकता कम होती है धनिया में। सल्फर बहुत आवश्यक है, क्योंकि सल्फर के बिना धनिया में क्या होता है फिर, और महुआ वगैरह रोग लग जाते हैं, तो महुआ क्या है उसका हानि पहुंचाता है डोडियों को, पत्तियों को, सबको हानि पहुंचाता है, तो वो थोड़ा सा उत्पादन को घटा सकता है। हाँ, मुनाफा दोनों में लगभग ऑलमोस्ट बराबर सा ही है, थोड़ा सा अजवाइन में ठीक मुनाफा निकलता है अगर उसको थोड़ा सा देख रेख से और थोड़ा सा जागरूकता के हिसाब से किया जाए, थोड़ा सा ज्यादा निकलता है। धनिया का क्या है, भाव थोड़ा सा मार्केट में फ्लक्चुएट करता है, अजवाइन का भाव थोड़ा सा फ्लक्चुएट कम करता है। अजवाइन का भाव ऑलमोस्ट 15,000 से ऊपर ही रहता है और धनिया का भाव लगभग 7,000 से 12,000 15,000 के आसपास बिकता है। और उसमें कलर का बहुत फर्क आता है, धनिया में बहुत ग्रीन कलर का धनिया है तो उसका भाव अच्छा मिलता है, लेकिन वो हल्का उसमें वजन होता है। जो भूरा वाला धनिया होता है वो थोड़ा सा भारी तुलता है, लेकिन उसका भाव कम मिलता है। अजवाइन में ऐसी समस्या अपन को देखने को नहीं मिलती है।
1: मैं किसान सत्य प्रकाश धाकड़ में खेती करता हूँ। मेरे पास 8 एकड़ जमीन है। बरसात की फसल में सोयाबीन और मक्का करते हैं, सर्दी की फसल में लहसुन जो मसाले में भी काम आती है, जो दवाई बनाने में काम आती है। तो आज हम मसाले की खेती के बारे में जानकारी के लिए लहसुन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं 2-3 एकड़ जमीन पर लहसुन की खेती करता हूँ। लहसुन की खेती करने के लिए सबसे पहले जमीन को तैयार करना होता है, 2 या 3 बार उसकी हकाई जुताई करनी होती है। उसके बाद में देसी खाद जो हम बोलते हैं गोबर का, वो डालकर जमीन को तैयार करते हैं। उसके बाद में लहसुन 2 प्रकार की लगाते हैं, देसी और ऊटी। तो बीज तैयार करते हैं, बीज तैयार करके उस बीज को मजदूरों से एक एक कली लगवाई जाती है। लहसुन लगवाने के बाद में उसमें हमें पानी देना पड़ता है। लहसुन की खेती में 6 या 7 पानी देना पड़ता है। निंदाई गुड़ाई आदि मजदूरों के द्वारा करवाई जाती है। अभी सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के मध्य तक इसका बीज रोपाई की जाती है। 3.5 4 महीने में कंप्लीट होकर मार्च माह में फसल पककर तैयार हो जाती है। इसमें जो रोग आता है, एक तो पत्तियों पर रोग आता है, पीली पड़ जाती है। लहसुन की जो कली होती है नीचे जड़ की तरफ रोग आता है। उनके लिए समय समय पर कृषि विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करके दवाई का छिड़काव किया जाता है। लहसुन का उत्पादन 1 एकड़ में 25 से 30 क्विंटल उत्पादन होता है। भंडारण के लिए इसका छायादार जगह पर इसको रखा जाता है। हमारे यहाँ पर लहसुन की मुख्य रूप से 2 तरह की किस्म लगाई जाती है। एक तो साउथ से बीज लेके आया जाता है जिसको ऊटी का लहसुन बोलते हैं, और एक हमारे जो पहले से लगाते आ रहे हैं देसी लहसुन, वो किस्म यहाँ पर अधिकतर लगाई जाती है। हम दोनों तरह की किस्म यहाँ पर लगाते हैं। लहसुन की जो उन्नत किस्म है उसमें ये देखा जाता है कि उसकी जो कली होती है वो मोटी होना चाहिए, और एक जो पूरा लहसुन का जो होता है उसमें 5 या 7 कली होना चाहिए। ज्यादा कली वाली जो बारीक कलियां होती है उसका दाम कम मिलता है। और अभी यहाँ पर मार्केट में जो भाव चल रहा है, 1 क्विंटल लहसुन का भाव 15,000 से 20,000 पर क्विंटल चल रहा है। लहसुन जो जो पैदावार होती है जमीन

0: के अंदर इसका बीज बनता है तो वैसे तो आंधी तूफान से इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी लगातार बारिश होने से इसमें रोग बढ़ने की संभावना रहती है, इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो उस टाइम पर कृषि विशेषज्ञों से सहायता प्राप्त करके दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। जैसे लहसुन के बीच में हम करना चाहें तो आलू लगा सकते हैं, आलू की फसल हम कर सकते हैं, टमाटर की फसल हम कर सकते हैं, लेकिन जहां पर ऊंची पहाड़ियां हैं, साल भर जहां पर ठंडा मौसम रहता है वहां पर ये लहसुन की फसल दो बार भी की जाती है। हमारे राजस्थान में जो हमारा क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो मंदसौर नीमच उज्जैन जो क्षेत्र है, यहाँ पर सर्दी में इस फसल को किया जाता है। तैयार होने के बाद में जब जमीन से निकालते हैं, एक एक पेड़ को पकड़ के निकाला जाता है, इससे क्या है कि इसकी कलियां बिखरना नहीं चाहिए। अगर लहसुन की कलियां बिखर जाती है तो उसका दाम कम मिलता है। फसल तैयार होने के बाद में जब इसको निकालते हैं तो इसमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि, और इसका रख रखाव के लिए छायादार भंडारण होना चाहिए जहाँ पर छाया हो। वैसे तो इसका हम 6 से 8 महीने तक भंडारण कर सकते हैं, लेकिन किसी के पास अगर छायादार पर्याप्त जगह है, अच्छी भंडारण व्यवस्था है, तो साल भर तक भी इसका भंडारण हम कर सकते हैं। सबसे मुख्य फसल लहसुन हमारे क्षेत्र में होने लग गया है। लहसुन की पैदावार अच्छी होती है, अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें किसान को अधिक मार्जिन प्राप्त होता है।
1: मैं चंद्र प्रकाश दासड़ गांव काशीपुरा और खेती किसानी करता हूँ। ये मसाला की खेती है कलौंजी, सर्दी में लगने वाली फसल है, ये 5 महीने में पक के तैयार होती है, 3 साढ़े 3 किलो 4 किलो खेत में बोई जाती है। इसकी बुआई दो प्रकार से की जाती है, पहले तो एक तो ये डायरेक्ट आप सूखे में इसको करके पानी छोड़ सकते हो, दूसरी इसको खेत को बढ़िया करके आग जोत करके टाइप करके कम्प्लीट करके भी इसको बोया जा सकता है। जो खेत को कंप्लीट करके और साफ करके किया जाता है उसको उगने में ज्यादा टाइम लगता है। 1 बीघा में 3.5 किलो 4 किलो 3.5 किलो बढ़िया बीज हो तो 3 किलो चल जाता है, नहीं तो अगर थोड़ा उसमें कुछ गड़बड़ हो 70-80% उगने की क्षमता हो तो फिर उसको 4 किलो कर देते हैं। ये 5 महीने में पक्के तैयार हो जाता है। जब इसके डोडे आते हैं उस टाइम इसको इसके एक स्प्रे की आवश्यकता होती है, बहुत ही आवश्यक ध्यान देने की जरूरत है, वह उसमें छोटी छोटी इल्लियां लग जाती है। इसको मजदूरों से ही कटाया जाता है, 2.5-3 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से इसकी फसल निकलती है, मजदूरों के द्वारा हार्वेस्ट थ्रेशिंग करके और बोरियों में बदली जाती है। बहुत बारीक फसल है, खाद भी कमी लगता है इसमें, एक बार इसका कचरा निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है इसमें।
2: इसी के साथ प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: प्रीति बहन
4: जी,
3: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत मसाला वर्गीय फसलों की खेती, और उन्होंने संध्या गुप्ता ने अनुभवी किसानों के साथ बातचीत की और उनके अनुभवों को हमारे साथ साझा किया।
4: बिल्कुल, और अब हम करवाते हैं मनोरंजन अपने साथियों का और सुनवाते हैं चंद्रपाल और साथियों की आवाज में ये भजन।

0: तो अभी आपने ये सुना भजन चंद्रपाल और साथियों की आवाज में, और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम कृषि जगत यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी साथियों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजा कार्यक्रम।

0: तो इसी के साथ गजल से सजा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 5366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत ताज। और अब मुख्य समाचार। दिल्ली मंत्रिमंडल ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षित परिवहन के लिए दुर्गा योजना को स्वीकृति दी। दिल्ली सरकार ने शहरी निकायों के लिए 1,850 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। दिल्ली में त्योहारों के मौसम में मिलावटी खोया, पनीर और छेना के खिलाफ अभियान तेज। और दिल्ली सरकार ने इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए राजधानी में 81 कृत्रिम विसर्जन कुंडों की व्यवस्था की है। और अब समाचार विस्तार से। महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षित परिवहन के लिए आज दिल्ली मंत्रिमंडल ने अपलिफ्टमेंट और रोजगार फॉर वुमेन और ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो दुर्गा योजना को स्वीकृति दी। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना का उद्देश्य सम्मानजनक रोजगार, महिला सुरक्षा, ट्रांसजेंडर भागीदारी, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और स्वच्छ शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दुर्गा योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत करने का प्रस्ताव है।

0: इनमें 1170 इलेक्ट्रिक ऑटो महिलाओं के लिए और 130 इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए होंगे। दिल्ली सरकार ने बताया कि आवेदक योजना के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। दुर्गा योजना के अंतर्गत ई ऑटो पर 3 वर्ष की अनिवार्य लॉक इन अवधि होगी। इस अवधि में वाहन को बेचा, हस्तांतरित या अन्य तरीके से निस्तारित नहीं किया जा सकेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: दिल्ली सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी और जनहित से जुड़ी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आईटीओ मेट्रो स्टेशन से विभिन्न योजनाओं और नागरिक सुविधाओं की जानकारी से सुसज्जित विशेष मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल की शुरुआत सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत की गई। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल स्क्रीन पर निर्धारित अंतराल पर योजनाओं और सेवाओं से संबंधित संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे। इन स्क्रीन पर 5 मिनट के अंतराल पर 15 सेकंड के लिए संदेश दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर स्थायी प्रचार पैनल भी लगाए जाएंगे। प्रत्येक स्टेशन पर पैनलों के माध्यम से योजनाओं और सरकारी पहलों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो प्रतिदिन बड़ी संख्या में दिल्ली वासियों को जोड़ती है और इस अभियान के माध्यम से योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की यह पहल सरकार और जनता के बीच सूचना की दूरी को कम करने में सहायक होगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि यह ट्रेन रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन और वायलेट लाइनों पर चलाई जाएगी, जिससे दिल्ली के नागरिक अपने लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में जान सकेंगे और आसानी से उनका लाभ उठा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली सरकार राजधानी को ट्रांजिट सिटी की छवि से निकालकर एक प्रमुख वैश्विक डेस्टिनेशन सिटी के रूप में स्थापित करने की तरफ अग्रसर है। श्री मिश्रा आज एक निजी मीडिया के पर्यटन समिट में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लाइव कॉन्सर्ट्स और बड़े आयोजनों के लिए स्थान के कायाकल्प, वायबिलिटी गैप फंडिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं।
3: हमारे जो हेरिटेज हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको डेवलप करना, उनको ठीक करना, उनके रिनोवेशन का काम और साथ ही साथ वहाँ पे सोशल और कल्चरल इवेंट्स, उसकी हम लोग पॉलिसी लेकर आए हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस दिल्ली में इवेंट के लिए हम लोग लेकर आए हैं। फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर दिल्ली को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं। फिल्म सब्सिडी की एक पॉलिसी लेकर आए हैं।
1: दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान श्री मिश्रा ने विभाग के सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रमिक कल्याण योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया और श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने पर विस्तृत चर्चा की। दिल्ली सरकार ने राजधानी के शहरी निकायों के लिए 1,850 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी है। ये किस्त वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली के तीनों नगर निकायों, नगर निगम दिल्ली, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड के लिए स्वीकृत की गई है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये राशि राजधानी में स्थानीय निकायों की मूलभूत नागरिक सेवाओं और दायित्वों को सुचारू रूप से संचालित करने में उपयोग की जाएगी। इसके साथ ही श्री सूद ने स्थानीय निकायों को अनुशासन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जारी की गई धनराशि का उपयोग केवल जनहित में किया जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है, जबकि हरीश द्विवेदी बिहार का दायित्व संभालेंगे। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया है। जमयांग सेरिंग नामग्याल और दर्शनाबेन जरदोश को दिल्ली का सह प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज ब्राजील दौरे के दौरान रियो डी जेनेरियो राज्य के कार्यवाहक गवर्नर और अपीलीय न्यायाधीश महामहिम रिकार्डो ऑटो डी कास्ट्रो से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत और ब्राजील के बीच संस्थागत जुड़ाव को मजबूत करने पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक शासन, सार्वजनिक संस्थानों तथा आपसी हित के विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा

0: वर्ष में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले ये योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशील और जनकल्याणकारी सोच का सशक्त उदाहरण है। एक
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म पर युवाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। इसके माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत संचालित माई भारत देश के युवाओं को सीखने, नेतृत्व करने और समाज की सेवा से जुड़ने वाला राष्ट्रीय मंच है। इसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर में इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई थी, अब ये 3 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। माई भारत के माध्यम से युवा अनुभव आधारित सीखने के कार्यक्रमों, स्वयं सेवा के अवसरों, क्विज, नेतृत्व गतिविधियों, युवा संवाद और सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अगस्त तक 1,22,000 से अधिक युवाओं ने करीब 25,000 अनुभव आधारित सीखने के कार्यक्रमों में पंजीकरण कराया था। अभिनव की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली सरकार ने त्योहारों के मौसम में मिलावटी खोया, पनीर और छेना के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले एक महीने के दौरान अब तक 4,000 किलोग्राम से अधिक मिलावटी खोया और पनीर नष्ट किया है। दिल्ली सरकार के अनुसार मोरीगेट खोया मंडी में की गई जांच के दौरान खोया के 30 नमूने लिए गए, जिनमें से 22 नमूने मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज खाड़ी बावली, ओखला सब्जी मंडी, पूर्वी दिल्ली के झील क्षेत्र और पश्चिमी दिल्ली की जनकपुरी मंडी समेत विभिन्न स्थानों पर जांच और परिवर्तन कार्रवाई की। विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों का मौसम समाप्त होने तक ये अभियान जारी रहेगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज जीबी पंत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री सिंह ने दवाओं की उपलब्धता, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और अस्पताल के विभिन्न विभागों के कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर श्री सिंह ने अस्पताल में मौजूद मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत कर अधिकारियों को जरूरी दवाइयों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दवाओं की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाएगी और अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि मरीजों को बिना किसी अनावश्यक परेशानी के जरूरी दवाएं उपलब्ध हों। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दिल्ली सरकार ने इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए राजधानी में 81 कृत्रिम विसर्जन कुंडों की व्यवस्था की है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों की आस्था और भक्ति का सम्मान करते हुए पर्यावरण की रक्षा करना है। श्रीमती गुप्ता ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे गणपति विसर्जन के लिए इन कृत्रिम विसर्जन कुंडों का अधिक से अधिक उपयोग करें और श्रद्धा के साथ साथ दिल्ली के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। गृह मंत्रालय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थल बनाने के विशेष अभियान का 6ठा चरण चलाएगा। ये अभियान अगले महीने की 2 तारीख से शुरू होकर 31 तारीख तक चलेगा। ये अभियान प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को स्थायी रूप देने के दृष्टिकोण को लेकर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करने के साथ साथ स्वच्छता को बढ़ावा देना, कामकाज को व्यवस्थित करना और लंबित शिकायतों का निपटारा करना है। भारतीय रेलवे ने

0: दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक रिपोर्ट।
1: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र INGNCA में 24 से 26 सितंबर तक सातवें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं तथा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। INGNCA के सदस्य सचिव डॉ सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि भारत में नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि देश की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। देश भर में आज 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का एक प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद भारत की हजारों वर्ष पुरानी ज्ञान परंपरा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में नई पहचान और नया विस्तार मिला है। मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने भी स्वस्थ खानपान की आदतों और पर्याप्त प्रोटीन सेवन के महत्व को उजागर करने के लिए 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य खानपान संबंधी जानकारी पूर्ण विकल्प और पर्याप्त पोषण प्रदान करना था। एक महीने तक चलने वाले इस आयोजन के अंतर्गत संस्थान पोषण प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता, स्कूली बच्चों के लिए पोषण जागरूकता कार्यक्रम और मातृ पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम सहित कई जागरूकता, शैक्षिक और जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये आयोजन 8 अक्टूबर को समाप्त होगा। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप खिली रही। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मंत्रिमंडल ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षित परिवहन के लिए दुर्गा योजना को स्वीकृति दी। दिल्ली सरकार ने शहरी निकायों के लिए 1,850 करोड़ रूपए की दूसरी किस्त जारी की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। दिल्ली में त्योहारों के मौसम में मिलावटी खोया, पनीर और छेना के खिलाफ अभियान तेज। और दिल्ली सरकार ने इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए राजधानी में 81 कृत्रिम विसर्जन कुंडों की व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

किसी को कोई मिला होगा अपने सबसे ज्यादा पसंदीदा के रूप में और किसी को कोई मिला होगा अपने हम सफर के रूप में, क्योंकि ये जो कोई है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत होता है।

0: श्रोताओं, जिंदगी का सफर ही कुछ यूं है कि प्यार करने वाला कोई तो चाहिए, ना केवल प्यार करने वाला बल्कि हमारा प्यार लेने वाला भी, गीले शिकवे बांटने वाला भी। और अभी आपने सुना दीवाना फिल्म से लिया गीत, विनोद राठौर की आवाज़ थी और इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

श्रोताओं ऐसे ही होते हैं ना प्यार करने वाले, जिससे करे मोहब्बत उसकी तकदीर सवार दे और साथ ऐसा निभाए कि जंजीर से भी मजबूत हो जाए। अभी आपने सुना अलका याग्निक रूप कुमार राठौर की आवाज़ में ये गीत। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर, नितिन रायकवर और आनंदराज आनंद, साथ ही साथ संगीत से सवारा अनु मलिक ने।

0: दिल देता है जान लेता है, जो प्यार करता है पागल बन जाता है। श्रोताओं, जब बात दिल और प्यार की हो ही रही है तो प्यार के मौसम की भी बात कर लेते हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। मिताली सिंह की आवाज है, साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह के स्वर हैं।
1: खत जो भेजे थे तुमने हैं अब भी।
2: आओ हम दोनों मिलके पढ़ते हैं।

ये प्यार का मौसम है और श्रोताओं, ये किस्मत ही तो है जो सफर में हम सफर से मिलवा देती है, कभी ना जुदा होने वाला रिश्ता बना देती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं दिल फिल्म से लिया गीत, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

0: और श्रोताओ, इसी गीत के साथ गीत मालिका का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी

0: सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जैगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से जो साथी, आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं।

0: उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
1: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
2: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
3: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
1: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: IMD ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज 2 महिलाओं समेत 3 शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले 2 दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रूपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की

0: पेट में आने से चार विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
1: एशियाई खेलों में रोशोबीना देवी वुशू के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं काफी इंजुरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
1: वहीं जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाश धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India reiterates its interests and concerns with United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference, says it has nothing to do with internal matters of India. Defence Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies, heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settle for bronze, taking overall tally to 12 medals, including one gold. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the sanctioning Russia and Iran last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York, City on Sunday is leading

0: From cheap inbound shipments. In December 2021, the Department of Revenue imposed the duty in the range of $110 per ton to $542 per ton for 5 years. The department has amended a notification to extend the levy of anti-dumping duty on imports of decor paper originating in or exported from People's Republic of China up to and inclusive of 26 March 2027. BJP President Nitin Nobin has appointed the party's in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Former Union Minister Smriti Irani has been appointed BJP in-charge for Chhattisgarh and Haryana, while Harish Dwivedi will oversee Bihar. Vinay Sahasrabuddhe has been given the charge of Delhi, while Jamyang Serin Namgyal and Darshana Ben Jardosh have been named as co-in-charges. Vinod Tavade has been appointed Uttar Pradesh in-charge, with Jagdish Patel, Medha Kulkarni, Pradeep Varma and Anant Ojha named as co-in-charges. Ram Madhav has been given charge of Tamil Nadu and Uttarakhand, while Tarun Chugh will oversee Gujarat. Satish Punia has been appointed in charge of Jammu and Kashmir and Punjab. Anil Antony will handle Goa and Nagaland. President Draupadi Murmu inaugurated the Global Spiritual Palace Retreat Center of Brahma Kumaris in Vadodara, Gujarat today. During the event, the president launched the Spiritual Awakening for World Renewal project. She virtually launched the Youth for Vikasit Bharat Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. On this occasion, she said that we need such youth power that is inspired by honesty, responsibility, compassion, coexistence and patriotism. She added, India has given the world ideals like yoga, meditation, non-violence, compassion and Vasudhaiva Kutumbakam.
1: युवाओं को सशक्त संस्कारवान आत्मनिर्भर शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान टेक्निक और कौशल से युक्त हो साथ ही आत्मविश्वास आत्म अनुशासन सकारात्मक सोच संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण
0: Earlier, President attended the 75th convocation ceremony of the Maharaja Sayajirao University of Baroda. She conferred gold medals and degrees to the students. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Atal Innovation Mission.
2: Atal Innovation Mission, which was set up in 2016, is Government of India's flagship initiative to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country. Under the Niti Aayog, the mission has taken a holistic approach to ensure creation of a problem-solving innovative mindset in schools and creating an ecosystem of entrepreneurship in universities, research institutions, private and MSME sector. Sharing his thoughts in the Man Ki Baat program on Akashwani in 2016, Prime Minister Narendra Modi had said that government has taken steps to attract new generation towards science and research through Atal Innovation Mission.
3: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेट अस एम टू इनोवेट और जब मैं लेट अस एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है एक इरादा है कि इस एम के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो इनोवेशन एक्सपेरिमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ये एक सिलसिला चले
2: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज सोमिया ए स्टूडेंट सेड दैट अटल टिंकरिंग लैब्स अंडर द मिशन मेड हर अंडरस्टैंड दैट स्किल्स एंड इनोवेटिव थॉट्स हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक देयर फ्यूचर्स ब्राइट
4: Before joining ATF classes, I think that studies and subjects were more important for every student. But after joining the ATL class, I learned that how skills and innovative thoughts help students to make their futures bright. Here, I learned many new things like Arduinos and sensors, how they work and how they use in our daily lives.
2: Atal Innovation Mission is creating and promoting a vibrant culture of innovation and entrepreneurship across the length and breadth of India. It is creating employment, products and innovative processes by fostering collaboration, vision and passion. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
0: A deep depression over the Bay of Bengal is moving towards the North Andhra Pradesh South Odisha coast and is expected to cross tonight. The system is likely to cross near Kalingapatnam between tonight and early hours of tomorrow, bringing very heavy to extremely heavy rain and squally winds. Indian men's badminton team settled for the bronze medal after facing a 1-3 defeat to China in the semi-final in Aichi, Japan today. Indian player Lakshya Sen lost the opening match 21-16-21-18 to Shi Yuki before Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty leveled the tie with a 21-11-21-20 win over reigning world champions Liang Wei King and Wang Xiang. The bronze medal takes India's overall tally to 12 medals, 1 gold, 5 silver and 6 bronze. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India reiterates its interests and concerns with the United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference, says it has nothing to do with internal matters of India. Defence Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies, heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settled for bronze, taking overall tally to 12 medals, including 1 gold. And that's all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले मुल्कों पर महसूल लगाने के अमेरिका के फैसले पर अपने मफादात और तशवीशात को दोहराया है। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम के जम्मू कश्मीर के हवाले को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि भारत के अंदरूनी मामला से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते पर दस्तखत किए हैं। बीजेपी ने सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए पार्टी के इंचार्ज और माविन इंचार्ज का ऐलान कर दिया है। खलीज बंगाल में हवा के गहरे दबाव का हल्का शिद्दत इख्तियार कर गया है। साहिली ओडिशा और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश हो रही है। और एशियन गेम्स में मर्दों की भारतीय बैडमिंटन टीम ने कांसे का तमगा जीता है। तमगों की कुल तादाद 12 हो गई है, जिसमें सोने का एक तमगा शामिल है। खबरें तफसील से। भारत ने आज एक बार फिर रूस और ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक कानून के हवाले से अपने मफादात और खदशात को दोहराया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की और मस्कूरा कानून के बारे में अपनी तशवीशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दो तरफा ताल्लुकात, नीज खलीज और यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते रूस और ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक कानून पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत उन्हें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर 100% तक महसूलात आयात करने का इख्तियार हासिल होगा। इसके जवाब में भारत ने कहा कि वह अपने माशी मफादात के तहफ्फुज और मुल्क की तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए सभी जरूरी इकदामात करेगा। जनाब जयशंकर इतवार को न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां वह अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफ्द की क्यादत कर रहे हैं। जनाब जयशंकर ने मुलाकात के बाद जनाब रूबियो से कहा कि भारत और अमरीका अहम इलाकाई तरजीहात पर बाहमी तआवुन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक बाहमी तालमेल के जरिए कलीदी शराकत दारी और अहम इलाकाई तरजीहात और आइंदा कसीर जहती कोशिशों में हम आहंगी को फरोग दे रहे हैं।

0: भारत में नाम निहाद इस्लामी ताउन तंजीम OIC के राबता ग्रुप के जम्मू कश्मीर से मुतालिक मुश्तरका एलामिये में भारत के ताल्लुक से पेश की गई बातों को बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया है। वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक OIC को भारत के अंदरूनी मामलात पर राय जनी करने का कोई हक नहीं है। वजारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट और नाकाबिल तंसीख हिस्से हैं। सियासी मकासद के तहत चलाए जाने वाला प्रोपेगेंडा हकीकत को फरामोश नहीं कर सकता। वजारत ने कहा कि सियासी अगराज पर मबनी इस तरह के बयानिये OIC की मोतबरियत पर संगीन सवाल खड़े करते हैं। वजारत ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को एक मनघड़त प्रोपेगेंडा चलाने के लिए मौका फराहम करने के बजाय OIC को पाकिस्तान को सही रास्ते पर चलने का मशवरा देना चाहिए। पाकिस्तान के जरिए दहशतगर्दी की हिमायत और एयानत किए जाने का बाकायदा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। उसे चाहिए कि वह पहले अपने कंट्रोल वाले इलाकों से पैदा होने वाली दहशतगर्दी के मुसलसल खतरे के मामले से निमटने पर ध्यान दे। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों SATSAAW और मुतालिका साजो सामान की खरीदारी के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के साथ 810 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत का मुआहदा किया है। मुआहदे पर आज नई दिल्ली में दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। SATSAAW की फराहमी 2027-28 और 2028-29 के दौरान की जाएगी। सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स फिजा से जमीन पर वार करने वाला इंतहाई दुरुस्त रहनुमाई के साथ ग्लाइड बम है, जिसे जगुआर, हॉक और SU-30 MKI जैसे तैयारों से दागा जा सकता है। यह तवील फासले से दुश्मन के हवाई अड्डों को तबाह करने की सलाहियत का हामिल है। DRDO के जरिए मुल्क में ही तैयार और डिजाइन किए गए इस निजाम में इब्तदाई पैमाइश यूनिट, देरपा व मौसर डिले फ्यूज और ट्विन स्टोर कैरियर जैसे जेली निजाम मुल्क के दिफा के शोबे में मजीद खुदकफील बनने की जानिब एक अहम पेशरफ्त हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के आलमी रूहानी पैलेस रिट्रीट सेंटर का इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया ने आलमी तजदीद प्रोजेक्ट के लिए रूहानी बेदारी का आगाज किया। उन्होंने वर्चुअल वसीले से विकसित भारत के लिए नौजवान मुल्क की तामीर से मुतालिक मुहिम के लिए अंदरूनी ताकत को बेदार करने का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसी नौजवान ताकत की जरूरत है जो सच्चाई, जिम्मेदारी, हमदर्दी, बकाए बाहम और हुब्बुल वतनी से तरगीब याफ्ता हो। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने दुनिया को योग, मेडिटेशन, अदम तशद्दुद, हमदर्दी और वसुधैव कुटुंबकम जैसे मिसाली अफकार दिए हैं।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से जो साथी आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे कबल सदर जमहूरिया ने बड़ौदा की महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के 75वें जलसा तकसीम असनाद में शिरकत की। उन्होंने तलबा को गोल्ड मेडल और डिग्रियां अता किये। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवाम खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि अटल इख्तरा मिशन के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूए कार लाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने 2016 में अटल इख्तरा मिशन कायम किया, जो मुल्क में अख्तरा और कारोबार के कल्चर को फरोग देने की खातिर एक अहम पहल है। नीति आयोग के तहत मिशन ने स्कूलों में मुश्किलात का हल निकालने के एक इख्तराई तर्ज अमल के क्याम को यकीनी बनाने के लिए मजमूई तरीक़ेकार अख्तियार किया और यूनिवर्सिटियों, तहकीकी इदारों, निजी और MSME शोबे में कारोबार का एक इको निज़ाम कायम किया। 2016 में आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हुकूमत ने अटल इख्तरा मिशन के जरिए नई नस्ल को साइंस और तहकीक की जानिब रागब करने के सिलसिले में इकदाम किए हैं।
3: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए और

0: नहीं तो मैं कहता हूं लेटेस्ट एम टू इनोवेट, और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूं तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
1: अटल इख्तरा मिशन भारत के टूल ओवर्स में इख्तरा और एंटरप्रेन्योरशिप का एक मुतहरिक कल्चर कायम कर रहा है और इसे फरोग दे रहा है। ये इश्तराक नजरिए और जज्बे को फरोग देकर रोजगार, मसनूआत की पैदावार और इख्तराई अमल में भी इजाफा कर रहा है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: माई भारत प्लेटफॉर्म पर 2023 में इसके आगाज के बाद से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान इंदराज कर चुके हैं। ये हसूलियाबी सीखने, रजाकाराना तौर पर क्यादत, शहरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने और नौजवानों पर मबनी इकदामात में हिस्सा लेने के अमल में नौजवानों की बढ़ती हुई शिरकत की अक्कासी करती है। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत के नौजवानों के उमूर के महकमे के तहत माई भारत मुल्क के नौजवानों को शामिल करने का एक अहम प्लेटफॉर्म है। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने अपने एक बयान में कहा कि पिछले साल अक्टूबर में इस प्लेटफॉर्म पर नौजवानों के जरिए इंदराज करने की तादाद 2 करोड़ से तजावज कर गई थी, जो अब 3 करोड़ तक हो गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए पार्टी के इंचार्ज और माविन इंचार्ज मुकर्रर किए हैं। साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ और हरियाणा के लिए बीजेपी इंचार्ज मुकर्रर की गई हैं, जबकि हरीश द्विवेदी बिहार की जिम्मेदारी संभालेंगे। विनय सहजबुधे को दिल्ली का इंचार्ज का चार्ज दिया गया है, जबकि जामयांग सेरिंग नामग्याल और दर्शनबेन जरदोश को माविन इंचार्ज बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है और जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को माविन इंचार्ज बनाया गया है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि वोटर फहरिस्तों की नजरसानी समेत सभी फैसले मुत्तफिका तौर पर किए गए हैं। कमीशन ने मुतला किया कि उसने मुतादित फैसले किए, तकरीबन 40 नए इकदामात मुतारिफ कराए और मुल्क भर में हालिया महीनों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी समेत कई इंतखाबी असलाहत अंजाम दी। कमीशन ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी इदारे में नजरियात और मुशाहिदात का अलग अलग होना एक मामूल की बात होती है और कतई फैसला करने से पहले फैसला साजी के अमल का ये एक हिस्सा है। उसने कहा कि कमीशन का हर अफसर इंतखाबी निजाम को बेहतर बनाने के खातिर कमीशन को अपनी तजावीज देने के लिए पूरी तरह मजाज है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने कल मगरबी बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, विदर्भ और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे ने अंडमान और निकोबार जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम और माहे और मराठवाड़ा में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। उधर खलीज बंगाल के ऊपर हवा का गहरा दबाव शिमाली आंध्र प्रदेश, जनूबी उड़ीसा साहिल की जानिब बढ़ रहा है और इसके आज रात साहिल पार करने का इम्कान है। हवा के दबाव का आज रात और कल सुबह सवेरे के दौरान कलिंगापट्टनम के नजदीक रुख करने का इम्कान है, जिसके नतीजे में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। उड़ीसा इंतजामिया ने सूरत हाल से निमटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। आफा से निमटने की टीमों को तैनात कर दिया गया है और सैलाब के खतरे वाले मुतादिद जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट।
3: जनूबी और साहिली उड़ीसा के कई इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। कोरापुट, गंजाम, गजपति, नवरंगपुर और मलकानगिरी मुतासर इलाकों में शामिल हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने जनूबी उड़ीसा के कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। वजीर आला मोहन चरण मांझी ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए आला तरीन सतह की तैयारी करने की हिदायत दी है। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई हैं। हसास इलाकों में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज को बंद कर दिया गया है, जबकि मुतासर इलाकों में सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
2: ماحولیات جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج نئی دلی میں آسٹریلیا کے آب و ہوا میں تبدیلی اور توانائی کے وزیر کرس بوون سے

मुलाकात की। जनाब ओविन तुर्की में इस साल 9 से 10 नवंबर के दरमियान होने वाली कॉप 31 मुज़ाकरात के सदर भी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने फिजी में अनकरीब होने वाली कॉप से पहले के मुज़ाकरात और तुर्की में होने वाली कॉप 31 के कलीदी मामलात पर अहम तबादला ख्याल किया। मकानात और शहरी उमूर से मुतालिक वजारत ने आज नई दिल्ली में 11वां यौम आयुर्वेद मनाया। ये तकरीब आयुष की वजारत की जानिब से मुल्क भर में मनाए जा रहे यौम आयुर्वेद के हिस्से के तौर पर मुनाकिद की गई। आज जापान के आईची एशियन गेम्स 2026 में मर्दों की भारतीय बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में चीन से 1-3 से हारने के बाद कांसे का तमगा जीता। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन इफ्तिताही मैच में शियुकी से 21-16, 21-18 से हार गए। इससे पहले सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने दिफाई आलमी चैंपियन लियांग वी कैंग और वांग शेंग को 21-11, 22-20 से हराया। इस तरह कांसे का तमगा जीतने के बाद भारत के कुल 12 तमगे हो गए हैं, जिनमें सोने का 1, चांदी के 5 और कांसे के 6 तमगे शामिल हैं। ईरान के सदर मसूद पजिश्कियान ने दावा किया है कि उनके अवाम अमरीका की जानिब से दहशतगर्दी से मुतासिर रहे हैं। सदर पजिश्कियान ने मरहूम रहबर आला अली खामनेई और जंग के शुरुआती दिनों में हलाक हुए 150 से ज्यादा स्कूली बच्चों की तस्वीर ले रखी थी। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले मुल्कों पर महसूल लगाने के अमरीका के फैसले पर अपने मफादात और तश्वीश को दोहराया है। भारत ने इस्लामी तआवुन तंजीम के जम्मू कश्मीर के हवाले को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि भारत के अंदरूनी मामला से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए 160 सेटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रूपये से ज्यादा के समझौते पर दस्तखत किए हैं। बीजेपी ने सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए पार्टी के इंचार्ज और माविन इंचार्ज का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

गुजर हो इतना प्याम कहना सब

0: نصف صباحا بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीय पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उनसे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों की ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
2: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से जो साथी, आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
1: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी से लाए गए 12 किलो सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी रोकने के लिए कई बार कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रूपये मूल्य का 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुषों की निशानेबाजी स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेक सिंह गिल और मेराज अहमद खान को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खिलाड़ियों ने एकाग्रता और बेहतरीन टीम वर्क प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री ने भविष्य के प्रयासों के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार

0: दे प्यार का बादल बरसे, आँख से प्यार का बादल बरसे, दुनिया
1: बोलो
0: तुमको
1: हाँ हाँ
0: देखे
1: क्या
0: तरसे।

0: अब सुनिए, रूठा ना करो, इस फिल्म का गीत, आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
1: दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ दूर दूर तक। एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी।
2: ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो?
1: सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं।
2: तब ठीक है।

0: बुला तू ही बुला। अरे हाँ बुला ना बुला ना, फिर जरूर सुनेगा।
1: चल बुला, चल बुला।
0: ना बाबा ना, लो मैंने बुला।
1: हाँ तेरी तो जरूर सुनेगा।
0: अरे बुला ना। अच्छा बाबा बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ। गोपी, ओ गोपी,
2: क्या

0: तो पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त,

पढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त, ए दोस्त,

साथियों, आपने सुना फिल्म सच्चाई का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की थी। और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गीत को गाया है।

पायल वाली रुक्मही न हो बहुत मगरूर, मूरख है जो चल पड़े अपनी हद से दूर।

मुझ पर तेरे रूप का जादू है बेकार, काम है तेरा नाचना, नाच भरे दरबार।

0: हाँ, बीबी और गुलाम, इस फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज आशा भोसले की थी। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम गीत सुनहरे यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम

0: एम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालत पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांधा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित की जा चुकी है। इनकी बिक्री 35 रूपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में संशोधित उड़ान योजना लागू करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राज्य सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश हवाई अड्डा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने इस पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। आंध्र प्रदेश उन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिन्होंने इस योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संशोधित उड़ान योजना का उद्देश्य किफायती हवाई संपर्क का विस्तार करना और कम सेवा वाले और सेवा रहित क्षेत्रों में विमानन बुनियादी ढांचा मजबूत करना है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंगत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा डिल्लो की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met

0: ये क्या शेखर, वो दोनों तो ऐसे ही चले गए, उन्हें जलाने का मौका ही नहीं मिला।
1: आज के लिए इतना काफी है संजना, आगे आगे देखो होता है क्या।

0: What the hell are you doing?
1: बहुत प्यार आ रहा है तुम पर.
0: But लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
1: Who cares? जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो और जो जल रहे हैं उन्हें जलने दो.
0: Okay.

0: जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम के अंतर्गत। जी हाँ, गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम अब संपन्न हुआ और समय हुआ है, समय 3 बजने को है। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री टोबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी

0: करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी स्मार्ट एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से जो साथी आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई महल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन जनताओं और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव देवजीत सौकिया ने कहा है कि मौजूदा चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त होने तक बोर्ड के पास पर्याप्त समय है और इसके बाद ही इस पद को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। अजीत अगरकर ने 18 सितंबर को BCCI को बताया था कि वे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपने 3 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। श्री सोकिया ने मीडिया से कहा कि BCCI जब भी निर्णय लेगा उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाओमिन बुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 3:10 और 10 सेकंड। ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम, जी हाँ, कार्यक्रम गीत गजल। तो साथियों, आज हम सुनवाएंगे बहुत ही शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं गजलों के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की बहुत ही सुंदर बेहतरीन गजल सुनवाते हैं। और आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। हो जाइए तैयार इस खूबसूरत गजल के साथ।

बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत आज फिर उनसे सामना होगा। बहुत ही प्यारी खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे, जी हाँ, जगजीत सिंह की आवाज़ में। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर, बेगाना वार। उनसे एक बड़ी ही प्यारी खूबसूरत गजल है, और माफ़ कीजिएगा, दूसरी गजल सुनवा रहे हैं, अहदे वफा आहिस्ता। बहुत ही प्यारी और लाजवाब, अनमोल खूबसूरत गजल, आइए सुनते हैं ये प्यारी सी गजल।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही शानदार बेहतरीन खूबसूरत गज़ल। बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम गीत गज़ल के अंतर्गत, बहुत ही शानदार रचना आज के कार्यक्रम की अंतिम सुंदर गज़ल।

त्रिशिव पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसमें आज आप सुनेंगे शीर गाजी एस गोविंदराजन के स्वर में सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम
0: भक्ति संगीत।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की दूसरी तिथि, तद अनुसार 24 सितंबर 2026। सुबह के 4:57 और 15 सेकंड हुए हैं। इन मीटरों पर हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 सितंबर 2026। श्रोताओं, आने वाले जो कार्यक्रम हैं उसकी कुछ विवरण बता देते हैं। कुछ इससे कुछ देर बाद कार्यक्रम होगा 5 बजे, आओ योग करें। आज का योग अश्वत्थासन और तितली क्रिया होगा और 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। जी हाँ दोस्तों, और इस मास का गीत सेवा में तेरी भारत।

5:30 पर का समय होता है स्वर रंजनी का हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। और 6 बजे हिंदी में न्यूज सुन रहे हैं, सुनेंगे आप। और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट का कार्यक्रम वंदना कार्यक्रम होता है, जिसमें बेस्ड ऑन मंत्रा वंदना डिवोशनल सॉन्ग्स पैट्रियोटिक भजन और शबद नाथ आप सुन सकेंगे, और जिसमें ओम जय जगदीश हरे सुरेश वाडकर की आवाज में और मुतजे पान इतरे कृपा। और 6:40 पर कार्यक्रम होगा चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे मंत्र योगा, वार्ताकार डॉक्टर इंदु शर्मा। 6:45 पर कार्यक्रम होगा रामचरित मानस, आज अयोध्या कांड भाग 58 में सुन सकेंगे। और 6:55 पर संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे और 7 बजे हिंदी में समाचार सुन सकेंगे। तो साथियों, ये थी कार्यक्रम की जानकारी। और यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी के तथा कथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा हैं। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1,400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक सातवें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं तथा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाओ रेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की महिला टीम और अनंतजीत सिंह, नरुका महराज, अहमद खान और भवतेग सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. After meeting with Jaishankar, Rubio said both countries are building strategic partnership and coordinating on key regional priorities and upcoming multilateral efforts. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC Reform along with his St. Lucian counterpart, Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlight the urgency of reform. He stressed that continuing to delay reform perpetuates historical injustice. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation Contact Group on Jammu and Kashmir, In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no locus standi to pronounce on matters that are

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें। आज का योगा है अश्वत्थासन और तितली क्रिया।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और सांस भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः सांस भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी सांस लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन सांस पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं शरीर में।

नाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें। कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं, जहां